नमस्कार, FM बहन 102.4 सात मेगाहर्ट्ज से असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन बुधवार है, शक संवत 1948 ते ज्येष्ठ महीने दी 20 तारीख है। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी 10 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने। साढ़ी अज दी सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू होंदे ने।

मालक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं और ना मेरी आरजू रहे।

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तो बुल्गारिया आते फिनलैंड दे दो दिना सरकारी दौरे ते होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवी दिल्ली विच लैंड पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनियम दा उद्घाटन कीता। केंद्रीय सेहत अते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नवी दिल्ली विच प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दे 10 साल दी याद विच PMSMA दी 10 साल देखभाल दा एक दहाका विषय ते तहत देशव्यापी जश्ना दी शुरुआत कीती। व्यापार मंत्रालय दा कहना है कि भारत दीआं बरामदां 12 सालां विच 866 अरब अमेरिकी डॉलर तक वधीआं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ।

0: सुनो, की तुसी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इस नाल तुहाडा घर सूर्य घर बन जांदा है, यानी तुहाडा बिजली दा बिल जीरो। होर पैदा हुई कोई भी वाधू बिजली ग्रिड नूं बेच के पैसे भी कमा सकदे हो। ता तुसी बैठे क्यों हो? हुणे रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in ते।

FM band 102.7 MHz से घड़ी दी सुई दे मुताबिक 8:30 होने जा रहे ने कुछ ही पल बाद तुसी साडे प्रदेशिक चैनल तो पंजाबी दे विच खबरां सुनोगे।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से करीरी सुई दस रही है कि वेला हो रहा है प्रोग्राम अड्डी टप्पा दा। ते आओ प्रोग्राम अड्डी टप्पा दे सफर दी शुरुआत करदे आ इस खूबसूरत गीत दे नाल।

0: कुछ मेरे को किया।
1: पतोड़
0: नहीं,
1: आहा आटा पे पहला भी खाता सी ना, खड़की नाम से अदा
2: समोसे।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारां दी छत ते सोलर पैनल लग

हाँ जी, आज तो मैं भी आई हूँ। इतनी गर्मी में आरजे गरिमा आई है जी। सो इट्स आरजे गरिमा, तो हरे अपने आकाशवाणी एफएम रेनबो पे 102.7 मेगाहर्ट्ज़ EIR एफएम रेनबो प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं जी। तो हरे अपना गीत बहार प्रोग्राम ओ जिथे तुसी 90s तो बाद दे जो भी एरा दे सॉन्ग्स ने ओ इंजॉय कर दियो, तो बहुत सी गल्ला भी जड़िया ने अपना इंजॉय कर दिया नाल नाल। वैसे आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन्ना ज़्यादा आप सवेरे उठ के तैयार क्यों होंगे, इन्ने परफ्यूम लगा लिए, इन्नी सनस्क्रीन लगा लिए, जो मर्जी कर लिए, पर जिवें आप अपने काम पर पहुंचते हाँ सारे यही लगता है कि भाई यह भी साड़ी तरह दौड़ लगा के आया है, या शायद जिम तो आया है, या फिर पता नहीं केड़ी कोई मैराथन है, या पत्थर तोड़ के ऐसा लगता है अपने आप को आप पत्थर तोड़ के पहुंचे हाँ अपने काम पर, बिकॉज इन्नी गर्मी जी स्टार्ट हो चुकी है होनी कि सिर जिन्ना भी आप जिन्ना मर्जी लिशक जाइए काफ़ी कुछ जो है वो डैमेज हो ही जाता है, साडा अपने आप को प्रैप किया हुआ, बट स्टिल साड़िया स्पिरिट्स डैमेज नहीं होंगे। आप गर्मी हो या सर्दी आप दौड़ भज करते रहीदा है, तो अपनी लाइफ न स्टेबल करने की कोशिश जी हर दिन साड़ी होंगी है, वो सक्सैसफुल होंगे रहीदा है, राइट।

सो जी बहुत ही अमेजिंग गाने तो बाद नेक्स्ट गाना सुनना बनता है बिकॉज मेरी जो नजर है गाने पे है आई एम जस्ट गोना क्लिक दिस सॉन्ग सो दैट थोड़े तक पहुंचे. सो बहुत ही प्यारा गाना सुर फिल्म तो आ भी जा लकी अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज़ दे विच स्टे ट्यून्ड प्रोग्राम गीत बहार बने रहो विद मी आरजे गरिमा.

वेल जी प्रोग्राम चल रहा है तो हमारा अपना गीत बहार विद मी आरजे गरिमा ओनली ऑन 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो. यू नो व्हाट, ए जो गर्मी का मौसम है ना, अपने नाल गर्मी के नाल नाल ना बहुत सारे गुड मतलब मूड रिफ्रेशिंग थिंग्स भी लैके आता है. मतलब ओ गर्मिया के दिन अंब कट कट के जो आप खाने एंड मैंगो शेक बना बना के जो पीने आ, की सर्दियों में यहोजा लुत्फ मिलता है कितने नहीं ना. सो इस करके हर मौसम का अपना फ्लेवर होता है, हर मौसम की अपनी अहमियत होती है. चाहे जिन्ना मर्जी सानू टॉर्चर करे पर वो जिन्हिया गुड थिंग्स है

उफ, साधना सरगम दी आवाज एंड दिस ब्यूटीफुल म्यूजिक विद अमेजिंग लिरिक्स गीत बहार प्रोग्राम दे विच तुसी गाना एंजॉय कीता 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो ते आरजे गरिमा दे नाल तुसी बने होए हो. सो ऑफ कोर्स दिस सॉन्ग विश्वत्मा फिल्म दा ए जो गाना है 1992 दे विच रिलीज हुई सी ये फिल्म. सो बहुत ही मल्टी स्टार फिल्म सी एंड दिव्या भारती जदों इस गाने दे विच नजर आई एक तां गाना इन्ना सुपरहिट उतों की दिव्या भारती की जो प्रेजेंस सी पीपल वर गॉन क्रेजी मतलब ऑडियंस जो है वो दिव्या भारती के लिए एक्चुअली पागल हो गई सी. सो दिव्या भारती ने चाहे एक छोटा स्पैन जो है बॉलीवुड दे विच स्पेंड किया पर बहुत ही एक ब्यूटीफुल सीगा अज तक दिव्या भारती नू लोग याद करते हैं उन्होंने फिल्म्स थ्रू उन्होंने ब्यूटी के थ्रू यू नो एंड चलो लाइफ गोज ऑन एंड फिलहाल शो गोज ऑन बिकॉज की है ना कि अगला गाना भी तुसी इंजॉय करना है हले कुमार सानू एंड अनु मलिक दा ए गाना तुसी इंजॉय करो क्योंकि ये गाना भी काफ़ी एक आइकॉनिक तो नहीं कह सकते पर शाहरुख खान दी वन ऑफ द मतलब जब उन्होंने करियर स्टार्ट किया सी उन्होंने मूवीज दे विच एंड दैट मूवी इज सुपर हिट वन. मतलब शाहरुख खान ने जो बिगनिंग दे विच नैगेटिव रोल्स किए ना चाहे ऑडियंस ने हेट किया हुए उन्होंने करैक्टर नू पर शाहरुख खान दी एक्टिंग एज अ विलन एज अ ग्रे शेड इट वॉज सो बैंग ऑन. सो ऑफकोर्स तुम समझ गए कि फिल्म के बारे गल कर रही हाँ. देखो उन्होंने नैगेटिव रोल्स काफ़ी फिल्म किए सी फॉर एग्जाम्पल डर एंड बाजीगर. सो आप एक काम करते हैं बाजीगर फिल्म तो गाना इंजॉय करते हैं. इंजॉय दिस ट्रैक एंड स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो आरजे गरिमा दे नाल बने रहो.

So how was the song? Geet Bahar program vich tusi enjoy kita hai gana Akashvani FM Rainbow te program Geet Bahar de vich aaj garima hai thode naal and program the last jo track hai main play karan ja rahi ha dekho eh jehda gana tusi Baazigar film to suniya jide vich Shahrukh Khan da of course kafi negative role siga and next gana tusi Dar film to sunoge jide vich negative role siga Shahrukh Khan da hun pata hai difference ki siga Baazigar film de vich pura logic istemal kita gaya siga par Dar film de vich climax vich logic da use nahi kita gaya because thode din pehla hi main ऑनलाइन देखती पी सी डर फिल्म मतलब मेरा एवं दिल किया देखने में मैं देखती पी सी सो मैं यह रियलाइज किया कि प्रो जो यू नो क्लाइमैक्स सिगा फिल्म दे विच यू नो डर फिल्म जो देखी हुई सारे ने तो आई लव यू किरण वाली सो उस फिल्म दे विच क्लाइमैक्स ऐसा दिखाया गया कि देखो जूही चावला का जरा हसबेंड है सनी देओल जो होंगे ने नेवी ऑफिसर होंगे ने तो लास्ट में राहुल यानी जिदा रोल शाहरुख खान ने प्ले किया सीगा उन्हें मार देंगे ने तो जूही चावला बचा लेंगे अपनी अपनी जो वाइफ है किरण उन्होंने बचा लेंदे सुनील ठीक है बट वह स्विट्जरलैंड के इदा होंगे बचा लेंदा है तो उन्होंने मार दिंदा है ठीक है वो जो नैगेटिव करैक्टर खत्म कर देता है फिर उस तो बाद अपनी वाइफ किरण नू लैके वापस इंडिया पहुँच जाता है खुशी खुशी कि चलो जी सारी जिंदगी चो विलन निकल गया हूँ आप अपनी मैरिड लाइफ जो है स्मूदली आप अगों चलावे पर वेयर इज़ द लॉजिक स्विट्जरलैंड मर्डर करके किदा सेफली इंडिया वापस आ सकता है उत्थे फैमिली नहीं लभदी पी होनी उन्हों या पुलिस नहीं लभदी पी होनी कि किन्ने मर्डर किया या कोई इन्वैसटीगेशन नहीं चलती होनी मतलब वो फटाफट मार के विलन नू वापस अपनी वाइफ किरण नू के इंडिया आ गया ते ए दिखाता क्लाइमैक्स ते बहुत ही हैप्पी क्लाइमैक्स सो बॉलीवुड फिल्मा पहले इदां दीआं हुंदीआं सीगीआं कि लॉजिक नूं भावें तेल लैन भेज दित्ता जांदा सी फिर भी सुपर डुपर हिट हो जांदीआं सीगीआं दैट्स द कमाल ऑफ बॉलीवुड या सो एनीवेज प्रोग्राम गीत बार दे विच डर फिल्म दा आए गाना इंजॉय करो एंड मैं तुहानूं मिलांगी नैक्सट प्रोग्राम दे विच ऑफ कोर्स सो यू स्टे ट्यून्ड विद मी आरजे गरिमा ऑन एफएम रेनबो

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो ते जी प्रोग्राम चल रहा है अपना पंजाबी तड़का। हेलो,
1: हो सके तो लौटा किसी बहाने से, क्योंकि मेरी दुनिया बिखर गई है मेरे दोस्त तेरे चले जाने से। मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: सतीश कुलियानी दिल कुशा मार्केट जलंधर से बोल रहे हैं।
0: सतीश कुलियानी जी, आपका दोस्त आपसे मिलने आया था और वो चला गया, इसलिए आपने ये शेर बोला?
1: हाँ जी जी मैडम जी।
0: ओके ठीक है,
1: क्योंकि मैडम जी दोस्ती है ना, तो दोस्त ना सी अपनी दिल की गल कर सकते हैं, जेडे गल अपने अपने फैमिली नाल नहीं कर सकते अपने दोस्त नाल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ए बिल्कुल ते हर रिश्ते विच आपां तां करके तां दोस्ती लभदे आ, because बहुत अहम
1: दोस्त मिलदे किस्मत नाल ही, बहुत वड़ी किस्मत अच्छी होई तो अच्छा दोस्त मिलेगा, नहीं तो आप तक तो जो भी

0: दोस्त मिले सब बेवफा मिले।
1: ओए होए होए होए
0: देखे
1: आप वफाएं निभाते रह गए, वो बेवफा निकल गए। वाह
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर कोई ऐसा ही कहता है। चलो जी आओ फिर गाना दसो केड़ा सुनोगे आज।
0: मैडम जी आप आए प्रोग्राम में बाहर आ गई,
1: शुक्रिया जी।
0: बड़ी देर में तुझे आयो,
1: इसलिए तो आपकी कॉल आ गई।
0: तो ज्यादा स्वागत कर रहे हैं जी,
1: थैंक यू
0: जी। साजी के ना निकलो सोने हो, बार बहुत गर्मी है, पसीना आएगा तो मेकअप खराब हो जाना जी।
1: इसका केस थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाओ तो निकल जाओ सारे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ओके शुक्रिया जी कॉल करने ली। ओके जी, सो जी तुसी प्रोग्राम पंजाबी तड़का विच कॉल लगा लो, क्योंकि नेक्स्ट एक या दो कॉलर्स अपने प्रोग्राम विच शामिल कर सकते हैं। सो फिलहाल पहले गाना सुन लिए सरदूल सिकंदर दा, ए गाना सज के ना निकलो। स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो, आरजे गरिमा है थोड़े नाल।

102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा अपना होम स्वीट होम। तो साड़िया जिहड़ियां लवली लेडीज ने जो किचन क्वीन बनदी है ना ते उन्हां नूं कहना चाहिए बई माई किचन माई रूल्स। नहीं पीने वह जे शरबत जिद विच बहुत सारे एडिड फ्लेवर्स ने, नहीं पीने वह जिहा कोल्ड ड्रिंक्स जिन्हों पी के इन्ना ज़्यादा साड़ी बॉडी दे बॉडी नूं डैम

102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम जो है वो चल रहा तो हाडा अपना होम स्वीट होम। सो होम स्वीट होम दे विच जो तो भी आपां साथ सजदी गल करिए हर कोई जो है नोटिस करता है सिर्फ थोड़ा ड्राइंग रूम ही नहीं थोड़ा डाइनिंग हॉल नहीं थोड़ा मेन हॉल नहीं बल्कि थोड़ा वॉशरूम एंड थोड़ी किचन भी बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि किचन या ओपन है तो ऑफकोर्स सब कुछ सामने दिखता है तो हमें बिल्कुल प्रॉपर सेट करके रखनी होती है मतलब कोई भी सामान जो है इधर उधर तुम अफोर्ड कर ही नहीं सकते बिकॉज यू आर हैविंग एन ओपन किचन। ओके एंड जे क्लोज भी है तो भी किचन का जिन्ना समान जो है सॉर्टेड रहेगा हर चीज़ अपनी जगह होएगी मतलब आप इधर उधर नहीं रखांगे जिहड़ी चीज़ जित्थों है उत्थे ही चक के रखांगे एंड प्रॉपरली उत्थे थोड़े थोड़े दिनों बाद डस्टिंग होंदी रहेगी। सो ऑब्वियस जी गल है साड़ी किचन चमक उठेगी। बहुत सारियां जिहड़ियां लेडीज़ ने उन्होंने बहुत मतलब वो कुक भी नहीं कर सकदियां जो तक उन्हां दी किचन उन्होंने सॉर्टेड ना मिले। सो अजिहियां लेडीज़ दे लई एक होर चीज़ है कि जे तुसीं अपनी रसोई दे विच कुछ इदां दे वॉल हैंगिंग लगाओ जो कि तुहाड़ी परसनैलिटी नूं रिप्रजेंट करदी होवे तां क्या ही कहने। फॉर एग्जाम्पल जे तुसीं बहुत टेस्टी फूड बनाते हो लोग तो बहुत ज्यादा अप्रीशिएट भी करते हैं तो तुसी अपने किचन दे विच लगा सकते हो किचन क्वीन दा एक वॉल हैंगिंग मतलब उते लिखा होएगा किचन क्वीन हालांकि कोई तुहानू गिफ्ट करे तो उन्हें ज्यादा वधिया लगेगा किसी ने बहुत तारीफ की है किचन क्वीन दा ए वॉल हैंगिंग दिता है या फिर बहुत सारी लेडीज जो है उन्होंने मैं मतलब किसी के मैं घर गई सी तो उन्होंने अपनी रसोई दे विच लगाया होया सीगा माई किचन माई रूल्स। ओके एंड किसी ने जो एक वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि हमेशा ही कन्फ्यूज रहती है कि भी मैं की बनावा मतलब मैं खाने दे विच की बनावा सो इस करके और उन्हें प्रॉपरली अपने वॉल हैंगिंग उत्ते लिखा होया आज खाने में क्या बनाऊँ सो दैट थले एक नोट भी है सो दैट जिन्हें जो खाना है वो अपने आप ही उत्ते लिख जाए एंड फिर वो डिसाइड कर पाएगी मतलब सारे की सहमति के नाल इको डिश बननी है नहीं कि हर कोई अपना अपना लिख जाए सारे की आपसी सहमति दे विच उत्ते लिखा जाएगा फिर नेक्स्ट डे वो जी सब्जी है या दाल है या राजमा है जो भी बनना है वो बनेगा। सो आई फाउंड इट अ रियली नाइस आइडिया। वैसे एक चीज़ है बहुत कन्फ्यूजन रहती ही रहती है लेडीज़ नूं मतलब बेचारियां लेडीज़ चैट जीपीटी को पुछदियां ने अजकल सवेरे उठ के कि अज मैं की बनावा सब्जी दे विच बेचारा चैट जीपीटी भी इन्ने सारे ऑप्शन दे दिंदा है कि दिमाग होर कन्फ्यूज हो जाता है फिर चैट जीपीटी को पुछो एक कोई चीज़ दस एंड चैट जीपीटी भी फिर बहुत सारिया ऑप्शन दसदा है कि थोड़ी पुछदा है पूरे क्वेश्चन पुछदा है थोड़ी फैमिली विच किन्नू की पसंद है ये है वो है मतलब चैट जीपीटी भी साड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे सकता कि आपां अज रोटी पानी च की बनाइए इन्नी कन्फ्यूजन होंगी है उतनी समझ देश तो मिलदियां भी लै दे कि कुछ ही सब्जियां ने सब्जियां की बहार तो आती नहीं जिम्मे विंटर्स के आती है। सो चलो एनीवेज फिर भी आप मैनेज करीद हस के मुस्करा के राइट एनीवेज हो भी बहुत सारी गल्ला करांगे साडे घर दियां साडे ब्यूटी दियां ते इस तो अलावा गर्मियों के एक इदा की मैजिकल चीज़ है ना साड़ी रसोई के जो कि बहुत सारिया चीज़ा ਦਿੱਲੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਟਰੈਕ ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਮ ਸਵੀਟ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਦ ਮੀ ਆਰ

प्लीज़ नहीं, आपने वो ऐप से डिलीट कर दो अपने फ़ोन तो नाउ। एक हुण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुहानूं जो दसन जा रही हाँ, सवेरे उठते ही ग्रैटीट्यूड प्रैक्टिस, रोज़ तीन चीज़ां लिखो जिहदे लई तुसीं थैंकफुल हैगे हो, ते उहनूं तुसीं यूनीवर्स नूं बोलो कि थैंक यू मैनूं है तीन चीज़ां देण दे लई, एंड नैचुरली तुहाडा जिहड़ा फोकस है पॉजिटिव चीज़ां वल शिफ्ट हो जाएगा, तीन तो चार चीज़ां बनणगियां, चार तो पाँच, पाँच तो दस, एंड तुहाडा जिहड़ा माइंड सैट है पॉजिटिव तो सुपर पॉजिटिव हुंदा चला जाएगा। सो इमोशनल हैल्थ हो जाएगी ना फिर फटाफट ठीक, है ना। सो इस करके खुश रहो ना। ते फिलहाल झुमका कित्थे डिग गया आपां पहले लभ लईए इस गाने द्वारा। सुंदे रहो FM रेनबो ते प्रोग्राम होम स्वीट होम विद मी RJ गरिमा।

102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम शुरू हो चुका है मिड डे मेलोडीज आरजे गरिमा दे नाल एंड पिया तुसी नैना लागे रही लता मंगेशकर दा गाना प्रोग्राम दे विच लता जी रफी साहब किशोर दा आशा जी सो एना दे किसी गाने तो जदों शुरुआत हुंदी है ना ते पता लग जांदा है कि जी मिड डे मेलोडीज प्रोग्राम शुरू हो गया है ना सो इन्हां सारियां जो मिड डे दियां मतलब जो इन्हां सारियां मेलोडीज दियां इन्हां सारियां सरगम नूं पिरो के प्रोग्राम बनता है सो इस करके तुसी बस बने रहो उन्हां उस पुराने मैजिक जिन्हों दोबारा इंजॉय करो वो जादू जो है वो एवरग्रीन है सो इस करके इन्हां प्रोग्राम दे विच इन्हां गानियां दा लुत्फ उठाते रहो प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज सुनते रहो विद मी आरजे गरिमा ऑन ऑन एफएम रेनबो

आज वो सिंगर्स हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आवाज़ ही तो उनकी पहचान है ना। उनकी आवाज़ से ही तो हमको याद रहती हैं बहुत सारी कहानियाँ। आकाशवाणी एफ एम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहा है जी, तुहाड़ा अपना मिड डे मैलडीज विद मी आरजे गरिमा। सो ए फिल्म सी किनारा, जो गाना है किनारा फिल्म, तो तुसी सुनिया 1977 दी फिल्म किनारा। सिंगर्स लता मंगेशकर एंड भूपिंदर सिंह एंड म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ कोर्स आरडी बर्मन साहब, लिरिसिस्ट गुलजार साहब एंड इस फिल्म द विच सी किनारा फिल्म दे विच जितेंद्र हेमा मालिनी एंड धर्मेंद्र। सो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी सीगियाँ, बिकॉज गुलजार साहब ते कुछ एलिगेशंस भी लगे सी, उन्होंने स्टोरी चुराई है, उन्होंने यू नो लिरिक्स चुराए ने, वट एवर। बट सॉन्ग इज सच ब्यूटिफुल सॉन्ग, मतलब कि हुन तक लता मंगेशकर जी की जो गल करिए, सब तो पहला थॉट दे यही गाना आता है कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है अगर याद रहे। सो जी मेरी आवाज़ पहचान है, एंड फिलहाल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक ऑफ द शो प्रोग्राम मिड डे मैलडीज, विच अगला गाना जो है किशोर तिलता जी की आवाज़ दे विच। एंड रेडियो इज़ सच मीडियम कि आवाज़ की दुनिया जो है एक ऐदा दा मैजिकल स्पेस है जिते कि यू नो गाने ने, ते वो अलग अलग आवाज़ा भी इन्होंने गाने विच सुनने तो मिलदिया ने, जो कि माइक दे थ्रू एंड रेडियो वेव्स दे थ्रू थोड़े तक पहुँचदिया ने। सो पूरा का पूरा आकाशवाणी ही मैं कह सकती हाँ कि एक जादू है ना। सो मिड डे मेलोडीज़ अगला गाना इंजॉय करो, स्टे ट्यून टू एफ एम रेनबो।

FM 102.7 MHz आकाशवाणी FM रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहा है। तो हाडा अपना मिड डे मैलडीज टाइम हो चुका है एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक का, उस तो बाद आप मिड डे मैलडीज प्रोग्राम जारी रखते हैं। स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो।

0: योजना तहत 1.6 करोड़ तो वध नौजवानों को सिखलाई दी गई है। वधदी हुनरमंद प्रतिभा मेक इन इंडिया पहल कदमी नु शक्ति दे रही है। रोजगार मेलिया नाही 12 लाख नियुक्ति पत्र वंडे गए ते रोजगार दे सुपने नु हकीकत विच बदलिया गया। 2 लाख तो वध स्टार्टअप्स ने 23 लाख तो वध नौकरियां दे मौके पैदा किए अते स्टार्टअप इकोसिस्टम्स नु एक मजबूत नींव प्रदान की। 2 लाख तो वध स्टार्टअप्स ने 23 लाख तो वध नौकरियां दे मौके पैदा किए अते विद्यार्थियों वल्लों विकसित किए 16 लाख नवीनता प्रोजेक्टा ने स्टार्टअप इकोसिस्टम नु एक मजबूत नींव प्रदान की थी। सरकार की हिमायत नाल देश की युवा शक्ति भारत लई एक नवी सवेर लिया रही है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल मैं सरबजीत कौर, आकाशवाणी खबरां जलंधर।
1: सरकार ने राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां लई 95,692 करोड़ दे अंतरिम बजट अलाटमेंट की तजवीज़ रखी है, जिस नाल मनरेगा तो विकसित भारत रोजगार गरंटी ते आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी विच सुचारू तब्दीली नूं यकीनी बनाया जा सकेगा। ए एक्ट 1 जुलाई तो देश भर च लागू होगा। विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवी दिल्ली च राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे पेंडू विकास मंत्रियां नाल एक वर्चुअल मीटिंग तो बाद इसका ऐलान किया।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को न आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गाँव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश च सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरां नूं पाइप राही कुदरती गैस पीएनजी की सप्लाई वधा रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनैक्शनों नूं पीएनजी कनैक्शनों च बदलन दीआं कोशिशां कीतीआं जा रही ने। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत जानकारी फैला के आलमी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार अजिहां गतिविधियां खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज तो बुलगारिया ते फिनलैंड दे 2 दिन सरकारी दौरे ते ने। विदेश मंत्रालय ने दस्सिया कि बुलगारिया की अपनी यात्रा दौरान डॉक्टर जयशंकर बुलगारिया दे चोटी दे नेतावां ते विदेश मंत्री नाल मुलाकात करनगे अते विचार वटांदरा करनगे। अफगानिस्तान के कोनार खोस्त और पतिका प्रांतों में पाकिस्तानी फौज के हवाई हमलों में 13 लोग मारे गए, जिन्हों में ज़्यादातर बच्चे ने। तालिबान के बुलारे ज़हीरुल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करदिया कहा कि इसने कल रात नागरिकां दे घरां नूं निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर अफगान हवाई खेत्र की उलंघना की ते इसनूं मानवतावादी अपराध ते हमलावर कार्रवाई करार दिता है। दक्षणी फिलीपींस विच बचाव टीमां ने कल नुकसानियां इमारतां की तलाशी ली तां जो यह यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी व्यक्ति इन्हां दे अंदर फसिया ना होवे। एक दिन पहला 7.8 तीव्रता वाले भूचाल च 37 लोग मारे गए, लगभग 500 जख्मी हुए ने, 32,000 तो वध लोग बेघर हो गए ने। दहाकियां च देश च आए सब तो शक्तिशाली भूचाल चो एक बारे अधिकारियों ने कहा कि 4 लोग अजे भी लापता ने, जबकि कुछ टीमां संभावी बचे हुए पीड़ितों लिए नुकसानियां इमारतों की तलाशी लै रही ने। आखिर च खास खबर एक बार फिर तो मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होण ते प्रधानमंत्री दे सब तो लंबे समय कार्यकाल की प्राप्ति के सिलसिले च अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ की नवी दिल्ली च बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों अज भारत दे सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनन ते देश विदेश तो वधाई देण दा सिलसिला जारी। सरकार वल्लों राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां लई 95,692 करोड़ दे अंतरिम बजट अलॉटमेंट की तजवीज़ ते विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज तो बुलगारिया ते फिनलैंड दे 2 दिन सरकारी दौरे ते। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे शाम 6:20 ते। नमस्कार।
3: FM बहन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM रेनबो ते तुसीं सुन रहे सी प्रादेशिक खबरां ते आओ हुण जारी रखदे हां प्रोग्राम मिड डे मैलडीज़। सुनते रहो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM रेनबो।

102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा अपना मिड डे मेलोडीज एंड फिलहाल आरजे गरिमा तुहानू कह रही है टाटा बाय अलविदा साइनिंग ऑफ राइट नाउ फिर किसी दिन मिलांगे पर फिलहाल तो इत्थे ही लास्ट ट्रैक जो है इस प्रोग्राम का प्ले करके मैं तो चली क्योंकि स्टूडियो में आरजे परमीश इज देयर जो कि अगले प्रोग्राम्स नाल तुहानू एंटरटेन करेंगे एंड मूविंग ऑन On to the last track of the show program midday madness which filal and I do take care of yourself bye bye and stay tuned to fm rainbow

हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्यारे सरोतियों की हाल चाल ने, मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल सब तो बोले सारियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल प्यारे सरोतियों। वेल वेल मैं जल्दी आ गया क्योंकि मैं तुहानूं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा सी, क्योंकि मैं घुरिया नहीं गया, इसलिए मैं जल्दी आ गया। ते दोस्तों गल करते हुए अपने ट्यून इन किया है 102.7 FM रेनबो ते, यह है थोड़ा अपना शो दिला शायर है, तो मैं थोड़ा अपना आरजी दोस्त रमनीश से थोड़े दिल की गल सुन आया हाँ। वाह तुम भी खुश हो गए होगे कि हाँ साड़ी गल सुन आया वाह। तो अज दे ना आप गल करते हैं दिला शायर च ना कि कहते हैं दिल अज जड़ा

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश।

0: के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
1: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
1: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
1: जी।
0: तो आज
1: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
0: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
1: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश, अफ्रीका।
1: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
0: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
1: जी।
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
1: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
1: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
1: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
1: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजी जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
1: जी।
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
1: जी।
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
1: जी।
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी।
0: हैं। फिर क्या होता है,
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
1: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
1: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
1: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी

0: CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और

0: केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील। चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर यह अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी

0: हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी।
1: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
1: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
1: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

ये जगह उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके,

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी सबसे

0: अरे तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
1: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली
2: हैं। हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
1: अच्छा।
2: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
1: मतलब
2: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
1: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
0: वांडी पेरियार?
1: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
1: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
0: जी,
1: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
0: अच्छा,
1: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
0: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
2: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
1: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
0: अच्छा।
1: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
2: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
1: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की कला है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, योग फॉर हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। उम्र बढ़ना प्रकृति का नियम है, लेकिन स्वस्थ सक्रिय और ऊर्जावान बने रहना हमारे हाथ में है। योग न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है बल्कि मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी करता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं योगी गुलशन कुमार। आप एक योग आचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच।
1: दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 01 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868-107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी सेहत की, आपकी फिटनेस की।

0: यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर अपने एक विशेषज्ञ से ही। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, आप हमें ये बताइए, हेल्दी एजिंग किसे कहा जाता है?
1: वृद्धावस्था में स्वस्थ कैसे रहा जाए, और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हेल्दी एजिंग किसे कहा जाता है, तो उम्र का बढ़ना प्रकृति का एक नियम है। बढ़ती उम्र एक खूबसूरत पड़ाव है जिसे योग के माध्यम से ऊर्जावान बनाया जा सकता है। और योग का केवल मतलब ये नहीं होता कि शरीर को कठिन आसनों से मोड़ना तोड़ना, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। योग का जहाँ तक अर्थ है, अपने शरीर के जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना, अपने शरीर के अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सक्रिय करना। प्रायः ये देखा जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो शरीर में कुछ समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का, जिसे हम हेल्दी एजिंग की बात कह रहे हैं, तो हेल्दी एजिंग को पाने के लिए योग एक माध्यम है, और इस माध्यम से हम एक हेल्दी एजिंग की लाइफ को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं।
0: तो योग, जैसे कि आपने कहा, हेल्दी एजिंग के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, तो ये हमारे शरीर को और मन को कैसे स्वस्थ रखेगा, कैसे रख सकते हैं हम इसके ज़रिए?
1: योग के माध्यम से शरीर और मन दोनों, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, और योग दोनों को स्वस्थ करने का एक माध्यम है। क्योंकि ये कहावत काफ़ी समय से प्रचलित रही है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। यदि एक शरीर अगर हमारा रोगी होता है तो उसका प्रभाव मन पे भी पड़ता है, और यदि मन रोगी होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के अलग अलग भागों पे पड़ता है। मन अगर रोगग्रस्त होता है, मन अगर विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होता है, तो उसका हमारे शरीर के आंतरिक कार्य प्रणाली पे बहुत गहरा दबाव पड़ता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन धीरे धीरे स्लो होने लगता है, और जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को शक्तिविहीन महसूस करता है। और जब हम योग से जुड़ते हैं तो योग करने से शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहने लगते हैं।
0: तो वृद्धावस्था की, जैसे कि हमारा आज का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, तो वृद्धावस्था में हम स्वस्थ रहें तो उसके लिए हमें कौन कौन से योग करने चाहिए?
1: वृद्धावस्था में व्यक्ति स्वस्थ रहे उसके लिए सबसे पहले है कि हमारे शरीर के जो जॉइंट्स हैं वो सारे जॉइंट्स हमारे फ्लेक्सिबल हों। हाथों में, उंगलियों में प्राय देखा गया है लोगों को रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाती है, घुटनों में अर्थराइटिस हो जाती है, पैरों में दर्द होने लगता है, कंधों में फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, और इसके अलावा कमर में दर्द रहने लगता है, गर्दन में दर्द रहने लगता है। तो वृद्धावस्था में इन सब रोगों को दूर करने के लिए योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब हम योग की कुछ आसनों का प्रयोग करते हैं, कुछ योग की सूक्ष्म क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो शरीर में जो एक बढ़ती उम्र के साथ चेंजेज आते हैं, उन चेंजेज को बढ़ने से रोका जा सकता है, और शरीर को फिर पूर्व अवस्था में, एक जो किसी समय में, किसी उम्र में हमारी एक शरीर की एक स्वस्थ अवस्था बनी हुई रही थी, कभी वो स्वस्थ अवस्था फिर वापस लौटने लगती है।
0: वृद्धावस्था में स्वस्थ अवस्था रहे, इस पर हम बातें और भी करेंगे।

0: पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, उम्र चाहे कोई भी हो, अगर हमने फिट रहने का, स्वस्थ रहने का लक्ष्य बना लिया तो हम उसे ज़रूर पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें आप ये बताइए कि वृद्धावस्था में, जैसे कि अगर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो इनके लिए क्या अलग अलग आसन है या कोई ऐसा आसन है जो दोनों कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं?
1: कुछ आसन महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, जिनमें से प्रमुख आसन हैं जैसे भुजंग आसन है, ये चाहे महिला है चाहे पुरुष है दोनों ही कर सकते हैं। भुजंग आसन की पद्धति इस प्रकार से है, बहुत आसान है करने का तरीका। इसमें पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथ की हथेलियों को कंधों के नीचे रखते हुए सांस भरते भरते गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठाते हुए कमर को मोड़ देने की स्थिति का नाम भुजंगासन है। ये महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे युवा हो सभी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त पादहस्त आसन है, ये खड़े होके आसन किए जाते हैं और दोनों पैर मिला के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होते हैं और फिर दोनों हाथ ऊपर सांस भरते हुए ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे आगे झुकते हुए दोनों हाथों को बिना घुटना मोड़े दोनों हाथ पैर के अंगूठे के साथ टच करेंगे और इसमें कुछ सेकंड रुकते हैं और कुछ सेकंड के बाद फिर दोनों हाथ ऊपर करते हुए वापस आ जाते हैं। ये बाध्यता

0: आसन है, इसको महिला और पुरुष दोनों कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त एक कटी चक्र आसन है, ये आसन भी पैरों में 2 फीट के लगभग अंतर रखते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ रखते हैं कंधे की सीध में, और फिर दोनों हाथों को लेफ्ट साइड कमर को ट्विस्ट करते हैं और कुछ सेकेंड ट्विस्ट करके रुकना होता है और फिर दोबारा सेंटर में वापस आ जाती हैं। ये दाएं और बाएं दोनों तरफ से यदि किया जाए तो ये आसन भी महिला और पुरुष दोनों एक साथ कर सकते हैं।
1: तो क्या यह आसन सुबह खाली पेट करना होता है या पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं?
0: खाली पेट ही आसन किए जाते हैं, और सुबह अगर ये आसन खाली पेट किए जाएं तो अधिक लाभ मिल सकता है। और जिनके पास सुबह कोई ऑफिस वर्क है, कहीं पर उनको जल्दी जाना होता है, तो शाम के समय भी ये आसन किए जा सकते हैं। शर्त ये है कि दोपहर का खाना 4 घंटे पहले खाया हुआ हो।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, शिल्पा मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब नमस्ते। ये लिखते हैं कि मैंने MRI करवाया था, मुझे साइटिका बताया है, मुझे हिप से काफ्स तक पेन होता है, मैं कौन सा योगा एक्सरसाइज करूं? सतीश कुमार, एज है 65 वर्ष और वजन है इनका 95 किलो, रोहिणी सेक्टर 17 दिल्ली से।
0: सतीश कुमार जी, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप साइटिका से पीड़ित हैं, और आसान तरीका है, साइटिका पेन से मुक्त होने का सबसे आसान तरीका योग ही है। इसमें विपरीत हस्तपाद स्पर्श आसन अनेक लोगों पे हमने प्रयोग किए हैं और उन लोगों ने साइटिका की पीड़ा से छुटकारा पाया है। और इसमें एक ही टांग में कमर रीढ़ की हड्डी से यह दर्द शुरू होता है कुल्ले तक, और कुल्ले से फिर थाइस में, और फिर काफ से पैर तक ये पेन की लहर जाती है। इसके लिए एक आसान आसन, जैसे मैंने बताया कि विपरीत हस्तपाद स्पर्श आसन कर सकती हैं, जमीन पर लेट जाएं और दोनों हाथों को शोल्डर के पैरेलल फैला के रखें, फिर दाहिना पैर आप बाएं हाथ के साथ मिलाने की कोशिश करें। जब दाहिना पैर उठा कर के बाईं तरफ लाएंगे तो घुटना सीधा रहना चाहिए, और यदि आपकी उसी टांग में दर्द है तो फिर ये शायद आप अपने आप ना कर पाएं, तो इसके लिए फैमिली के किसी मेंबर्स की सपोर्ट लीजिए और वो आपके पैर को ऊपर उठाते हुए राइट वाले पैर को लेफ्ट फैले हुए हाथ के पास लगा के कुछ सेकंड रोकें, और कुछ सेकंड रोकने के बाद फिर पैर को वापस ले आना होता है। इसी प्रकार दूसरे पैर से करते हैं। ये विधि अगर 3 से 5 बार सुबह शाम अगर की जाती है तो आप पाएंगे कि आपकी साइटिका पेन में काफ़ी आपको 8-10 दिन के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक विश्वास पैदा होता है, और फिर आप कुछ दिन अगर इसको कर लेते हैं 15 दिन 20 दिन तो 80 से 90% साइटिका पेन से छुटकारा मिल जाता है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
3: हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: हिम्मत सिंह हरियाणा से बोल रहा हूँ मैम, आपको भी नमस्ते और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: जी आरडी की प्रॉब्लम है जी, एसिडिटी ऊपर रिफ्लेक्स हो जाती है, उसके लिए कोई योगा जी?
0: एसिडिटी रिफ्लेक्स यदि आपको हो रही है तो जिन चीज़ों से एसिडिटी आपको खाने से बनती है, इस चीज़ का आपको पता चल गया होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं, कॉफ़ी का सेवन करते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी मात्रा को कम कीजिए। दूसरा, अपना आहार में बदलाव लाइए। 2 प्रकार के आहार हम लेते हैं, एक होता है एसिडिक फूड और दूसरा होता है एल्कलाइन। तो 70% आप एल्कलाइन फूड लीजिए और 30% आप एसिडिक फूड लीजिएगा। एसिडिक फूड में

0: आता है मैदे का बना हुआ सामान है, बेकरी है, बिस्किट्स है और नमकीन है, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। और जितना भी क्षारीय आहार है उसमें गाजर है, खीरा है, टमाटर है, ये जितने भी रॉ वेजिटेबल्स हैं इनको आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको ये एसिडिटी की जो शिकायत है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। योग की जहाँ तक बात की जाए तो योग में आप कुंजल क्रिया कीजिए, सुबह खाली पेट 3 से 5 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और आगे झुकते हुए दो उंगलियां अपनी जीभ से थोड़ा सा टच करें, उससे पिया हुआ पानी सारा वोमिट बन करके बाहर आ जाएगा। जैसे ही पानी बाहर आएगा तो आपकी एसिडिटी भी उसमें घुलनशील होकर के बाहर निकल जाएगी। ऐसे प्रतिदिन कुछ दिन कर लीजिए तो डेफिनेटली आपको इससे काफ़ी लाभ मिल जाएगा।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: उत्तराखंड से रघुवीर जी बोल रहे हैं।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: जैसे मैडम ने बताया कि योग से सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि सारी बीमारियां हैं इससे दूर हो सकती हैं, तो मैडम मेरा ऐसा है ना डॉक्टर साहब।
0: जी जी बोलिए।
2: मेरा थोड़ा बीपी ज्यादा है तो जी। मैं एमिडोपिन कोई अंग्रेजी दवाई है तो उससे मैं समझता हूँ कि साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, तो मुझे कौन सा योग करना पड़ेगा? दूसरी बात यह है कि जो स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि योग के साथ साथ दवाई भी खाना चाहिए, कैंसर की बीमारी दूर होती है, तो इस तरह से गलत धारणा भी लोगों के दिमाग में है, तो मुझे यही बताना है कि आप मुझे कौन सा योग करना है, बीपी ज्यादा है।
0: देखिए, ब्लड प्रेशर हाई होना एक लाइफस्टाइल डिजीज के अंतर्गत आता है, तो यदि आपका जीवन की पद्धति कुछ आपको लगता है कि अगर कुछ गलत चल रही है तो उसको थोड़ा सा बदलाव लाइएगा, और अगर आप अपने आहार में बहुत ज़्यादा सोडियम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप तीखे मिर्च मसाले वाली वेजिटेबल्स लेते हैं या बाज़ार का कुछ इस तरह की ऑनलाइन चीज़ें आप खाना पसंद करते हैं, तो उनको थोड़ा मिनिमाइज कीजिएगा। और जहाँ तक योग की बात आप कह रहे हैं कि इसमें देखा गया है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको चंद्रभेदन प्राणायाम की मदद ले सकते हैं। इसमें राइट नोस्टिल बंद करते हुए लेफ्ट नोस्टिल से सांस को भीतर लीजिए और राइट नोस्टिल से सांस को बाहर कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा संयम से कीजिए, जल्दी में और बहुत तेज़ी में आके मत करें, धीरे धीरे आप लेफ्ट नोस्टिल यानी चंद्र नाड़ी से सांस लीजिए और राइट नोस्टी से धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। ये कम से कम 5 मिनट तक आप कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त आप शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं और आप अपने दोनों टीथ को आपस में मिलाइए और टीथ के माध्यम से वायु को मुख के द्वारा भीतर की ओर धीरे धीरे भरिए। पूरा भरने के बाद होठों को बंद कर लेते हैं, फिर दोनों नोस्टी से सांस को बाहर छोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये 2 प्राणायाम कीजिए, साथ में रिलैक्सेशन करिएगा। जब भी आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ हो तब आप थोड़ा रिलैक्सेशन करें, नीचे लेट जाएं या अपने बेड पे भी लेट सकते हैं, और बेड पे लेटते हुए शरीर को जितना रिलैक्स कर सकते हो अपने आप को ढीला छोड़ते जाओ। और ढीला छोड़ने का क्रम जो है 5 से 10 मिनट तक लगता है, एकदम शरीर ढीला नहीं हो जाता। जैसे जैसे बॉडी आपकी रिलैक्स होती चली जाएगी आपका जो शूटअप हुआ ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। और इस तरह से आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। और जब भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ हो तब आप राइट

0: करवट लेके लेटे, राइट करवट लेके लेटने से आपकी चंद्र नाड़ी से श्वास प्रश्वास चलना शुरू हो जाती है। ऐसा करने से साइंटिफिकली क्या प्रभाव पड़ेगा कि चंद्र नाड़ी से सांस चलने से ब्लड प्रेशर कैसे कम हो सकता है? इसका सीधा प्रभाव जो है वो हमारी पैरासंपैथेटिक नाड़ियों पे पड़ता है। जब पैरासंपैथेटिक नाड़ियाँ हमारी एक्टिव हो जाती हैं तब हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है, तनाव कम हो जाता है और हम देखा है हमने कि 10 से 15 यूनिट ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। तो आप इनका प्रयोग करके देखिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि इनसे पहले भी एक श्रोता थे हमारे साथ लाइन पे, उन्होंने भी कहा था कि डाइजेशन का इशू है, तो वृद्धावस्था में अक्सर देखा जाता है कि कुछ खाते हैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पाचन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, तो क्या कुछ ऐसे योग आसन हैं कि जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाए, जो हम डेली में कर ले, ईजली खा सके, ईजली डाइजेस्ट हो सके?
0: जो वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें ये देखा गया है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति का जो चलना फिरना है वो काफ़ी कम हो जाता है। 60 इयर्स की एज के बाद प्राय लोगों को देखा गया है, वो बैठे रहते हैं या वो अपने बेड पे लेटे रहते हैं, उन्हें आराम करना ज़्यादा आरामदायक और अच्छा लगने लगता है। बॉडी का डीएक्टिवेट होना ही सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण हमारी पाचन क्रिया जो है मंद पड़ने शुरू हो जाती है। अगर आप थोड़ा बॉडी को वर्किंग में रखें, थोड़ा सा वॉक कीजिएगा और खाना जो है वो थोड़ा सा हल्का लीजिएगा, क्योंकि आप अब आपकी कैलोरी बर्न तो हो नहीं रही है। तो अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जैसे आप 10-15 साल पहले कर रहे थे, भोजन की क्वांटिटी यदि उतनी ही ले रहे हैं और वर्किंग में बॉडी है नहीं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है, और जिसके कारण आपको एक मंदाग्नि रोग के शिकार इस उम्र में लोग हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें केवल इतना ही करना है कि जठरा अग्नि को थोड़ा सा दीपन किया जाए। जठरा अग्नि को बढ़ाने के लिए योग में अग्नि सार क्रिया की बात बताई गई है। वज्रासन में इसमें बैठ जाते हैं, यानी दोनों घुटने मोड़ करके एड़ियां हिप्स के नीचे रख के वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखते हैं, सांस पूरा भरें और फिर सांस को पूरा धीरे धीरे बाहर छोड़ के सांस को बाहर रोक देते हैं, तब पेट की धीरे धीरे पंपिंग करते हैं, पेट अंदर खींचते हैं बाहर करते हैं, अंदर खींचते हैं बाहर करते हैं, ऐसा सांस के बाहर रोके रहने तक 10-12 बार ही हो पाता है, फिर एक नई सांस ले लें, पेट को हिलाना बंद कर दें। इस तरह से इस पद्धति को 4-5 बार किया जाए तो आपकी पाचन क्रिया बेहतर हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखना है, इस समस्या का जो संबंध है वो आपकी नींद से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आपकी पाचन क्रिया हमेशा खराब रहेगी। तो रात की नींद गहरी होनी चाहिए, तब आपका पाचन क्रिया भी अच्छा होगा।
1: अक्सर हम सोचते हैं कि वृद्धावस्था में कि हमने अपनी उम्र में बहुत काम कर लिया, अब हम आराम करेंगे, लेकिन काम से आराम करना, शरीर को आराम नहीं देना।
0: जी जी
1: जी, बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं योग फॉर हेल्दी एजिंग पर, यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं कर्मपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70 से 75-80 केजी के आसपास मेरा वजन है। ओ पॉजिटिव मेरा ग्रुप है, ब्लड ग्रुप
1: जी।
2: पित्त मेरी प्रवृत्ति है। तो डॉक्टर साहब, मेरे कई सारे सवाल हैं, प्लीज आप नोट करें, मैडम भी नोट करें। वैसे तो खैर 21st को आप जगह डे मना ही रहे हैं हम सब, तो मेरी आप लोगों से तमन्ना है कि एक दिन जो है ना आकाशवाणी से पूरे प्रोग्राम योगा पर, सारे प्रोग्राम कैंसिल करके योगा प्रोग्राम पेश करें। जैसे एक घंटा फॉरन कार्यक्रम, एक घंटा अपने हिसाब से पेश, डॉक्टर अपनी राय दें, एक घंटा फॉरन

0: अपनी राय में ऐसे कुछ होना अच्छा रहेगा,
1: आप
0: तो ये
1: अपना
0: वर्डे के
1: सवाल
0: मायने बढ़
1: कीजिए,
0: जाएंगे।
1: आप अपना
0: अब मैं अपने
1: सवाल
0: सवालों
1: कीजिए।
0: पे आता हूँ डॉक्टर साहब। मेरे को क्या है कि कमर में और गर्दन में प्रॉब्लम है, हिप ज्वाइंट में और नेक में प्रॉब्लम है। अब मैं आगे की ओर बेंड होता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम बढ़ रही है, पीछे की ओर बेंड होता हूँ तो मुझे उसका रिलीफ मिलता है। तो हिप्स में ना क्या है, स्टिफनेस तो नहीं है, सॉरी स्वेलिंग नहीं है, स्टिफनेस और पेन होता है, धनुष होता है ना, धनुष उस
1: जी
0: किस्म
1: जी
0: का मेरा शरीर हो गया है। तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? और सर्दियों में बीमारी बढ़ जाती है, गर्मी में थोड़ा सा उतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस सर्दी दोनों में बढ़ जाती है। क्या मैं विदाउट सपोर्ट बैठो या आगे की ओर बैंड हो, या इंडियन टॉयलेट में ऐसे बैठता उस मुद्रा में बैठो अवस्था में मुझे परेशानी हो रही है, इसे मुझे क्या करना चाहिए?
1: आपने कमर और आपने गर्दन में पीड़ा की बात कही है, और आपने स्वयं ही बता दिया कि आगे झुकने से कमर में दर्द और गर्दन का दर्द बढ़ जाता है। ये सावधानी आपको बरतनी होगी। जब तक आप थोड़ा योग करके स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक आपको फ्रंट बेंडिंग अवॉइड करना चाहिए। और योग की जहाँ तक बात आती है कि अगर कमर में दर्द है तो इसके लिए दो कारण हो सकते हैं। हमारी बैकबोन के अंदर एक डीजनरेटिव प्रोसेस होता है, और दूसरा होता है कि हमारी जो कमर की मांसपेशियां हैं उसमें ऐंठन आ जाती है, तो भी हमारी कमर में दर्द होता है। यही स्थिति गर्दन के साथ होती है। जब भी हमारी रीढ़ की हड्डी में डीजनरेटिव प्रोसेस होगा, तो हमारे वर्टिब्रेस के अंदर कुछ रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से टच करती है, तो उसकी वजह से नाड़ियों में एक झुनझुनी, एक दर्द की लहर पैदा होती है। तो आपको इसके लिए आसान सा दो आसन हम बता रहे हैं। एक आसन पहले भी मैं वर्णन कर चुका हूँ, भुजंग आसन करेंगे। पेट के बल लेटना है, और पेट के बल लेट करके दोनों हाथ अपनी कंधों के नीचे रखते हुए हाथों के सपोर्ट से अपनी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठाएं, और साथ साथ जितनी आसानी से कमर मुड़ जाए उतनी मोड़ें, क्योंकि ज़्यादा मोड़ेंगे तो एकदम बहुत तेज दर्द कमर में आने की संभावना होती है। धीरे धीरे मोड़ें, और फिर थोड़ा रुके 2-3 सेकंड, उसके बाद फिर माथे को नीचे ले आएंगे, तो आपकी कमर में और गर्दन में उसी समय नीचे लाने पे तुरंत ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसे करने से हमें आराम मिल रहा है। दूसरा हम कर सकते हैं मकर आसन। इसमें पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, और दोनों घुटने मोड़ लेने चाहिए, और दोनों हाथों को मकर आसन करने के लिए कंधों की सीध में फैला दिया जाता है, और दोनों मुड़े हुए घुटनों को लेफ्ट साइड की ओर मोड़ें और अपनी गर्दन को राइट साइड मोड़ें। यहाँ पे 2 सेकंड, 4 सेकंड, जितना आप रुक सकते हैं आराम से रुकें, उसके बाद 2-4 सेकंड बाद फिर दोनों घुटनों को और गर्दन को बीच में ले आए। इसी तरह से दोनों घुटनों को राइट साइड मोड़ेंगे और गर्दन लेफ्ट साइड मोड़ेंगे। इस तरह से ये विधि मकर आसन की दोनों तरफ से 4-4 बार कीजिएगा, और जिस दिन आप करेंगे उसी दिन पहले दिन ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप खुद बेटर फील करना शुरू कर दोगे।
2: जी, एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब नमस्ते। मेरी वाइफ को हर्पीस की बीमारी है, आई से नीचे की तरफ नोज़ पर पेन होता है। मेरी वाइफ कौन सा योग करें कि फ़ायदा हो? राजरानी, एज है इनकी 67 ईयर्स, और रोहिणी दिल्ली से।
1: देखिए, हर्पीज एक प्रकार के जीवाणु के कारण होती है, और इसमें बड़ा इरिटेशन होती है जो जो भी इस रोग के शिकार होते हैं, तो काफ़ी इरिटेशन फील होती है, तो कुछ ठंडक चाहिए। तो ठंडक चाहिए तो इसके लिए किया जा सकता है, शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। अपनी जीभ को थोड़ा सा पाइप नुमा बना के फोल्ड करें, और जीभ के माध्यम

0: से शीतल शीतल वायु को भीतर की ओर भरें और फिर होंठ बंद करके अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकें और थोड़ी रोकने के बाद दोनों नोस्ट्रिल से वायु को छोड़ दें। ये कम से कम 5 से 10 मिनट तक प्रतिदिन करें तो जो इरिटेशन आपके फेस के आसपास आईज के नीचे हो रही है हर्पीज के कारण, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। और इसके साथ जो भी आपको ट्रीटमेंट से जो भी आप ले रहे हैं वो इसको कंटिन्यू में रखें अभी।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ही लिखते हैं, आई एम सागर फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका।

0: हो रही है हर्पीज के कारण, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। और इसके साथ जो भी आपको ट्रीटमेंट्स जो भी आप ले रहे हैं, वो इसको कंटिन्यू में रखें अभी।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, आई एम सागर फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका। आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। इन टूडेज स्ट्रेसफुल वर्ल्ड आई एम मेंटली एंड फिजिकली डिस्टर्ब्ड। विच योग आसन आई कैन डू टू बी फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव। वैसे तो इनकी उम्र 26 साल की और हम वृद्धावस्था पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने मैसेज भेजा है तो हम ले लेंगे आज के शो में। तो ये लिखते हैं कि मैं फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो कौन सा योगासन करूँ?
0: फिजिकली और मेंटली अनफिट होना इस बात की तरफ संकेत देता है कि आपके अंदर जो एक बायो एनर्जी है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि बायो एनर्जी हमें माइंड और बॉडी दोनों से कनेक्ट करती है। जब भी हमारी बायो एनर्जी कमज़ोर हो जाएगी तो हम फिजिकली और मेंटली दोनों में अनफिट फील करेंगे। और आपको क्या करना है, आप कुछ दिन, केवल कुछ दिन अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिएगा। राइट नोस्टिल बंद करें और लेफ्ट नोस्टिल से सांस अंदर भरना है और फिर राइट नोस्टिल से छोड़ देना है। फिर लेफ्ट नोस्टी बंद करें, राइट नोस्टी से भरें और लेफ्ट नोस्टी से छोड़ देना है। ये ऑल्टरनेट प्रोसेस के साथ ब्रीदिंग आप करिए और कम से कम 10 मिनट जरूर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि पहले दिन ही, जिस दिन आप 10 मिनट करेंगे, आप अपने अंदर बड़ा ग्रेटेस्ट चेंज फील कर पाएंगे। तो आप इसे करिएगा और फिर इसके रिजल्ट देखिएगा।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैडम। डॉक्टर
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैडम को भी नमस्कार। मैं रघुवीर सिंह ठाकुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
0: जी बोलिए रघुवीर जी।
2: मैडम मैडम मेरे को 2-3 सवाल पूछने थे। जैसे ये मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, मेरी उम्र है 58-59 60 करीबन।
1: जी
2: तो आर्मी में क्या होता है कि कोई भी पीटी लंबी रनिंग के बाद या कुछ वार्म अप के बाद ही होती है, तो उसमें बताते हैं कि लंबी सांस नाक से लो और मुंह से छोड़ो करके। तो अब सिविल में तो ये बोलते हैं कि नाक से लो, नाक से ही छोड़ो। एक क्वेश्चन ये था। एक दूसरा क्वेश्चन मेरा श्रोता बंधु जो रघुवीर जी के लिए आपने बोला था कि जो हम जीभ को मोड़ते हैं तो उससे सांस लेते हैं, तो फिर मुंह बंद करके छोड़ना है या फिर जीभ से छोड़ना है? क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करता हूँ, जब मैं कोई भी काम मुम करता हूँ तो मैं लगा रहता हूँ ऐसे।
0: शीतली
2: और
0: प्रम
2: तीसरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो योगा से फायदा होता है या फिजिकल से फायदा होता है? क्योंकि फिजिकल रनिंग भी हम लोग करते हैं, जैसे हमारे तो घर रोड साइड में तो दौड़ जाते हैं, कभी टाइम नहीं मिलता। तो योगा से में फायदा होता है ज्यादा कि या फिजिकल उसमें फायदा होता है, थोड़ा बताने की कोशिश करें मैडम।
0: देखिए, योग जो है वो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को स्वस्थ करने का एक माध्यम है। फिजिकली जितना भी आप रनिंग करते हैं, उससे शरीर का जो बाहरी हिस्सा है, जैसे मांसपेशियां हैं और आपका थोड़ा स्टेमिना अच्छा हो जाता है, इतना ही होता है। लेकिन यदि आप शारीरिक और मानसिक विकास और बौद्धिक विकास करना चाहते हैं, तो इन सब का जो लाभ है वो केवल योग से ही मिलता है। योग हमारी भावनाओं के ऊपर प्रभाव डालता है, हमारी सोच को सकारात्मक करता है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाती ये सब चीज़ें। आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, तो योग आपको तनाव से मुक्त करने का एक तरीका बताता है। और आप की सोच एकदम पॉजिटिव हो जाती है और आप सारा दिन रिलैक्स महसूस करने लगते हो।
1: रिलैक्स रहने के लिए तो हम योग करते हैं और योग करना भी ज़रूरी है। एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर, योग क्या दिन में किसी समय भी कर सकते हैं? स्टैंडिंग पोजीशन में अगर ना कर सकते हो, क्या सिटिंग पोजीशन में कुछ क्रियाएं कर सकते हैं? सरोज मल्होत्रा, साकेत, मेरठ से।
0: सरोज जी, योग का समय सुबह और शाम का ही ठीक समय माना गया है, लेकिन यदि

0: ऑफिस वर्किंग हैं और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, तो आप अपनी चेयर पे बैठे हुए भी कुछ योग कर सकते हैं। जैसे ट्विस्टिंग कर सकते हैं, पैरों को ज़मीन पे टिका करके और आप अपनी कमर को लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करें, फिर सेंटर में लाएं, फिर राइट साइड ट्विस्ट करें, तो इसे चेयर योगा कहते हैं। तो चेयर पे बैठे बैठे आप अपनी गर्दन काफ़ी आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं और गर्दन अकड़ गई है 6-7 घंटे काम करते, तो चेयर पे बैठे बैठे गर्दन को बैक स्ट्रेच कीजिए और गर्दन को साइड मूवमेंट दीजिए। इस तरह से 4-5 टाइम्स बैक स्ट्रेच करें, फ्रंट में लाएं और फिर इसी तरह गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़ें, फिर सेंटर में लाएं, फिर राइट साइड मोड़ें, ऐसे 4-4 टाइम्स इसे करें। तो आप ऑफिस में बैठ के भी योग कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअली समय निर्धारित है वो सुबह और शाम का है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो फिर आप अपने ऑफिस में चेयर पे बैठ के भी योगा कर सकते हैं।
1: शायद कई बार काम करते करते हम स्ट्रेचिंग करना भी भूल जाते हैं, लेकिन बाद में जब दर्द का एहसास होता है तब हमें लगता है कि हाँ कुछ अकड़ गया है, जकड़ गया है,
0: तो जब अकड़ जाता है तो उसको करने के बाद तुरंत रिलीफ भी मिलता
1: मिलता
0: है।
1: है। एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, नमस्कार, मन को एकाग्र करने का उपाय समझाइए, क्या उसके लिए कोई योग है? अनिल गुरुग्राम से।
0: अनिल जी की मन को एकाग्र करने की ही बात हमारे महर्षि पतंजलि जी ने की है। महर्षि पतंजलि हमारे योग के गुरु कहलाते हैं और उन्होंने कहा कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और योग करने से एकाग्रता आती है। आप योग करने के लिए एक ड्राइंग पेपर के ऊपर एक 1 रुपीस कॉइन्स का एक गोल चक्र बना लें और उसको किसी ब्लैक पेन से ऐसे फिल कर लीजिए, बिल्कुल काले रंग का एक गोल चक्र बन जाएगा। उसे आप दीवार के ऊपर कहीं पेस्ट कर लीजिए और पेस्ट करने के बाद अपनी नासिका से 4 फीट की दूरी पर बैठ करके उस गोल बिंदु को देखें और आप देखेंगे कि 2-3 मिनट देखने के बाद आपके चित्त में एक ठहराव आने लगता है और आपकी एकाग्रता अच्छी हो जाती है। इसे योग की भाषा में त्राटक विधि कहते हैं और जैसे जैसे आप त्राटक विधि का प्रयोग करने लगेंगे आपके मन में एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आपके मन में अननेसेसरी जो थॉट्स आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे।
1: तो क्या ऐसे में याददाश्त बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे कि वृद्धावस्था में जाते हैं तो कई बार हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो क्या कुछ याददाश्त बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसे योगासन है जो बढ़ती उम्र के साथ कर लेने चाहिए?
0: बिल्कुल, प्राय ये देखा गया है कि एक उम्र के बाद भूलने की बीमारी आने लगती है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, हम कोई सामान रख के भूल जाते हैं और कभी कभी किसी किसी का नाम भी व्यक्ति भूल जाता है। तो स्मृति के ऊपर योग का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है तो दिमाग की जो क्रियाशीलता है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। तो डीप ब्रीदिंग करनी होती है, इसमें एक स्मृति शक्ति विकासक योग की बात कही गई है। ये विधि खड़े होके की जाती है, दोनों पांव को मिला करके गर्दन सामने की तरफ रखते हैं और सिर के मिडिल हेड के ऊपर फोकस करते हुए फोर्सफुली आपको इनहेल एक्सहेल 15 से 20 बार करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ब्रेन को ऑक्सीजन मिलने से ब्रेन के अंदर एक फ्रेशनेस आती है और उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो धूमिल हुई स्मृति है फिर से जागृत हो जाती है और फिर हम स्मृति में काफ़ी सुधार महसूस करते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार जी. आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं?
1: नमस्ते मैडम। मेरा नाम ब्रह्म दत्त है, मंगोलपुरी दिल्ली से कॉल कर रहा हूँ। पहले
0: अच्छा, बताइए क्या प्रश्न है आपका.
1: तो विशेषज्ञ जो आए हैं उनको सादर प्रणाम
0: सादर प्रणाम ब्रह्मदत्त जी.
1: जी। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी हाईफाई मशीनें हैं आजकल अत्यधिक तकनीक से युक्त। हम लोग जिम जाते हैं जिम करने, तो क्या जिम और योगा संयुक्त रूप से कर सकते हैं? क्या इसके कोई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं?
0: नहीं,
1: कृपया
0: संयुक्त
1: बताने
0: रूप
1: का।
0: से कर सकते हैं, दोनों चीज़ें संयुक्त रूप से कर
1: धन्यवाद।
0: सकते हैं. पहले जिम कर लीजिए, और जिम पूरा जब हो जाए तो उसके बीच में 10 मिनट का थोड़ा गैपिंग रखिएगा. उसके बाद आप योग कर लीजिएगा, क्योंकि जिम जो है वो आपकी मसल्स पावर को बढ़ाता है, और योग जो है वो आपके ओवरऑल जितने भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है हमारा, और हमारा एस्क्रिटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह से हमारा पूरा जो नाड़ी तंत्र है उन पे गहरा प्रभाव योग के माध्यम से आता है. और इनमें एनर्जी आती है योग करने से. दूसरा, एक तरफ आप जिम करते हैं तो मसल्स हार्ड हो जाते हैं, टाइट करता है जिम, और योग उन मसल्स में एक नई स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है. दोनों में बस थोड़ा सा ये अंतर है कि आपने जो जिम के माध्यम से मसल्स डेवलप किया है, वो योग के माध्यम से उस मसल्स को लंबे समय तक बनाए रखने में आपकी योग से काफ़ी सहायता मिल जाती है. एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, हम सब अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं, तो क्या चाय के बाद हम योग कर सकते हैं? और हमें अपनी मील्स में क्या-क्या खाना चाहिए, प्लीज़ बताएं। पूनम फ्रॉम नांगलोई।
1: पूनम जी, आप दिन की शुरुआत चाय से मत कीजिएगा. आप दिन की शुरुआत हरे नारियल के पानी से करें. सुबह उठते ही एक हरे नारियल का पानी आपको लेना चाहिए. अगर आपके पास हरा नारियल उपलब्ध नहीं है, तब आप नींबू पानी पी सकते हैं. नींबू पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं. यदि नींबू पानी भी आप नहीं पीना चाहते, तो सुबह फलों का एक गिलास जूस पी लिया कीजिएगा. दिन की शुरुआत आप ऐसे करें. आगे आप क्या पूछ रहे हैं?
0: वो कह रहे हैं कि वो चाय के बाद हम योग कर सकते हैं।
1: चाय के आधे घंटे के बाद आप योग कर सकते हैं. चाहे जैसे ही आपने शाम को 4 बजे चाय पी है, तो 5 बजे आप योग कर सकते हैं.
0: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, वेरी नाइस डिस्कशन, वेरी नाइसली कंडक्टेड बाय शिल्पा गुप्ता मैडम एंड आल्सो डॉक्टर योगा टीचर। माय प्रॉब्लम इज माय स्लीप गेटिंग डिस्टर्ब ड्यू टू यूरिन। माई एज इज 60 ईयर्स। प्रोस्टेट ऑपरेशन डन मे बी ड्यू टू बीपी टैबलेट। गाइड फॉर कंटिन्यूस पीसफुल स्लीप। आई एम गेटिंग अप अर्ली। संजय जोशी फ्रॉम पुणे। तो
1: संजय जोशी जी, आप प्रोस्टेट की इस प्रॉब्लम के कारण जो इनकंटिनेंस यूरिन की समस्या है, उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है. तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक कीजिएगा. इसके लिए मैं एक आसान सी विधि आपको बता रहा हूँ. इसमें योग में आती है एक प्रक्रिया मूलबंध की. आप अपने गुदा की मांसपेशियों को अंदर स्क्वीज करें. गुदा की मांसपेशियों को स्क्वीज करते हुए कुछ देर रोके. ऐसे रोकने के कारण आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो प्रॉब्लम है, वो काफ़ी सुधरना शुरू हो जाएगा. जैसे जैसे प्रोस्टेट प्रॉब्लम में सुधार होगा, आपका जो फ्रीक्वेंटली यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है, और उसमें सुधार हो जाएगा. नाइट में बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने के कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है. ओवरऑल इसका जो पूरे हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है. तो सबसे पहले आप अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को

0: कीजिए, जैसे मैंने बताया एक नेचुरल वे है कि आप मूलबंध लगाएं, गुदा को भींच के रखने की प्रक्रिया को मूलबंध कहते हैं, इसे रोकिए और फिर उसके बाद इसे ढीला कर दीजिए। कितनी बार करना चाहिए? कम से कम कंटिन्यूसली 5 मिनट तो जरूर कीजिए। एक आता है मल आसन। जैसे इंडियन हमारी टॉयलेट होती थी तो दोनों पैरों के भार हम बैठते थे, उस स्थिति का नाम है मल आसन। उसमें बैठ जाइए 2-3 मिनट और फिर बस उसे छोड़ दीजिए। इस तरह से करिए। रात्रि के समय जो लिक्विड डाइट्स है वो कम लीजिए। दूध या अन्य पदार्थ रात के सोने से पहले लेना बंद कर दिया कीजिएगा, और उससे आपकी रात को यूरिनेशन नहीं होगा और कम हो जाएगा, और जिससे नींद आपकी क्वालिटी सुधरेगी। और नींद के लिए थोड़ा सा शवासन रात को जरूर कर लिया करें।
1: योग ज़रूरी है, चाहे हम सुबह उठ के करें और रात की अगर नींद की समस्या है तो रात को ज़रूर करें। एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं रविंद्र पाठक, आशा पाठक फ्रॉम नीदरलैंड। वेरी रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम जी एंड डॉक्टर सर जी, प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड रविंद्र पाठक जी का आँखों का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के कितने टाइम बाद योग शुरू किया जा सकता है? बहुत सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। वेरी थैंक्स एंड वेरी रिगार्ड्स।
0: आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है तो आप 20-25 दिन बाद हल्के हल्के योग करना शुरू कर दीजिएगा। 20-25 दिन बाद सर्जरी अगर आपकी हुई है तो 20-25 दिन बाद योग करना शुरू कर दीजिएगा, और धीरे धीरे एक हफ्ते तक जो आपका पुराना रूटीन योग कर रहा है, एक हफ्ते तक उसी रूटीन में आके कर सकते हैं। और कोई सवाल इन्होंने पूछा?
1: नहीं, उन्होंने यही पूछा था कि कितने दिन बाद योग शुरू कर सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: कर सकते हैं, 20-25 दिन बाद शुरू कर सकते हैं।
1: और एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम और डॉक्टर योगाचार्य को सादर नमन। डॉक्टर साहब, योग बंद कमरे में या खुले पार्क में करना चाहिए? योग में खान पान का क्या महत्व है? बच्चे, जवान और बुजुर्गों को कैसी डाइट रखनी चाहिए? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: योग हमेशा खुले स्थान पे ही करना चाहिए। बंद कमरों में योग करने से उतना लाभ हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी पाई जाती है। जब हम खुले वातावरण में योग करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर उसका प्रवाह अच्छा हो जाता है। कॉस्मिक एनर्जी के प्रवाह अच्छा हो जाने से हमारा जो सोच है वो सकारात्मक होने लगती है। और जहाँ तक आपने आहार की बात की है कि कैसा आहार होना चाहिए, अगर हमारा शरीर 10 से 22-25 साल की एज का है तो हमें अपने शरीर के ग्रोथ के लिए अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन लेना है, जिसमें सभी तरह के तत्व शामिल हो, मिनरल्स भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। और अब अगर बात आ जाती है कि उम्र बढ़ गई है तो उम्र बढ़ करके हमें अपने भोजन पे थोड़ा सा संयम बरतना है। योग में ये भी बताया गया है कि शरीर को 4 भागों में बांट दिया जाए, 2 भाग भोजन के और 1 भाग जल के लिए और 1 भाग खाली रखना चाहिए सांस लेने और छोड़ने के लिए। तो इस तरह से आप भोजन का विभाजन अपने लिए कर सकते हैं।
1: वैसे हमारा जाने का समय हो गया है, लेकिन जाते जाते शॉर्ट में एक मैसेज आया है, वो मैं लेना चाहूँगी। वो लिखती हैं, उनकी एज 46 ईयर्स है, रेनू भोपाल से। प्लीज़ सजेस्ट योगा फॉर प्री मेनोपॉज वुमेन के लिए।
0: प्री मेनोपॉज के अंतर्गत जब प्री मेनोपॉज के लक्षण्स आती हैं तब प्राय ये देखा जाता है कि महिलाओं में एक डिप्रेशन की स्थिति आने लगती है, हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। तो प्री मेनोपॉज की स्थिति में योग की कुछ विधियां, जैसे कोन आसन है, पादहस्त आसन है, ताड़ासन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इतना कर लीजिए, इससे काफ़ी फायदा होगा।
1: और जाते जाते एक लास्ट में हमारे जो श्रोता उनके लिए मैसेज कि कोई आसन जो हर कोई कर सकता है वृद्धावस्था में अपने, जिससे कि वो स्वस्थ रहे।
0: ताड़ासन सभी उम्र के लोग कर सकते हैं।

0: ताड़ासन वृद्ध भी कर सकती हैं, युवा भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकती हैं। कम से कम 8-10 बार ताड़ासन करें, पादहस्त आसन करें और कटी चक्र आसन करें, कोण आसन करें। यही सारे आसन हानि रहित हैं, सभी कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, उम्र केवल एक संख्या है, लेकिन स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज की चर्चा से हमने जाना कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को अधिक संतुलित, ऊर्जावान और आनंदमय बनाने का मार्ग है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे योग विशेषज्ञ योगी गुलशन कुमार। आप हमारे कार्यक्रम में आए और योग के महत्व को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूँगी, योग अपनाइए, स्वस्थ रहिए और हर उम्र को उत्साह के साथ जिए। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर उबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, सजग रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: हाँ जी हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल ने, प्रोग्राम चल रहा है लाइव जलंधर ते म्यूजिक। देखो दोस्तों, चल रहे रेनबो ऑडिशन ते ना तुसी जेड़े भी रैप नू मानदे तुसी मत्था टेक के आजो, क्योंकि रेनबो ऑडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी कि साडे स्रोते वाली। ए ऑडिशन नाल तुसी पास होंगे या फेल होंगे। हेलो हेलो
1: हेलो, सत श्री अकाल सर जी।
0: हाँ जी सत श्री अकाल जी, की नाम तुहाडा?
1: पर
0: अपना जवाब जेड़े
1: आए,
0: तुसी भी कहने होंगे काश 2 घंटे दा प्रोग्राम होर मिल जाए, हैना? अच्छा जी, ओ 2 घंटे का होर मतलब ना?
1: हाँ जी हाँ जी सर जी।
0: चलो ये भी बढ़िया, ये बारे सोच विचार करांगे, ठीक है जी?
1: ठीक है सर जी।
0: हाँ जी, ये साड़ी की टीम हैगी है पीछे बैठी ना, पूरे एक मेंबर दी, अपन नु अपन मीटिंग करांगे फिर अपन देखदे हैं। हाँ जी हाँ जी, चलो जी सोनू साहब, चलो एक इंटरव्यू का टाइम हो गया। तुम्हारा नाम की है? तुम दस दस सोनू जी, तो एज कि 38
1: जी सर।
0: ठीक है जी, ते ताड़ा पता की है?
1: सर जी विले नडाला, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला।
0: अच्छा जी, नहीं मेरा कहने मतलब पता है, मूली का पत्ता पसंद है कि गोभी का पत्ता पसंद है?
1: गोभी का पत्ता जी।
0: अच्छा जी, गोभी तो फॉलो नहीं होता?

0: हाँ जी हाँ जी दोस्तों, की हाल है जी। प्रोग्राम चल रहा है हेलो जलंधर ते साडे सरोते कहना मतलब इंटरव्यूअर साडे नाल बस जुड़ चुके ने। क्यों कहना मतलब की है कि जिहड़ा FM रेनबो दा इंटरव्यू है ना, वैसे बहुत सौखा सी इहदा ते साडे सरोते ने जवाब भी अच्छे अच्छे दिते ते म्यूजिक भी बैकग्राउंड बज चुका ते इंटरव्यू भी साडे नाल आ चुके ने जी। हेलो
1: हेलो सत श्री अकाल जी।
0: हाँ जी सत श्री अकाल जी, की नाम तुहाडा?
1: संदीप सिंह।
0: संदीप सिंह? अच्छा, मतलब सत्त रंग दी ना एक टाइम ते सोहनी लगी होगी ता करके इन्होंने गाना भी करता, नहीं तो FM रेनबो सत्त रंग दा है जी, है ना जी।
1: हां जी हां जी, रेनबो ते ते रंग काफी है।
0: ए किन्ने है
1: रेनबो वर्गे रंग नहीं हिंदा सकदे।
0: अच्छा मैं की सुनाई ता नहीं तुसी गल सानू?
1: सुनाई है।
0: अच्छा जी कह दो ते मैं भी सुनी है जी। हां जी हां जी, संदीप जी नाम दा ना तुहाडा?
1: हां जी हां जी संदीप।
0: अच्छा जी संदीप है जी, चलो वधिया जी। अपना कहन दा मतलब संदीप जी एक क्वेश्चन है तुहाडे तों।
1: हां जी दस।
0: तुहाडा माइंड टेस्ट होगा
1: ठीक।
0: कहन दा मतलब ए है कि कहन दा मतलब साडियां दो लत्तां ही क्यों लगियां ते घोड़े ते चार क्यों लगियां होईयां?
1: दो लत्तां घोड़े ने क्योंकि दौड़ना होंदा इस करके ते चार लत्तां।
0: देखो जी मैं तुहानूं दस्सदा, असीं भी दौड़ सकदे हां, तुहानूं पता।
1: मैनूं
0: जवाब चाहिदा सर।
1: जवाब ते हुण आंदा नहीं
0: कोई। चलो सोचो, कोई ना सोच लो। कोई ना रुको, लंबा सांह लै लो, कोई गल नहीं, मैं टाइम दे रहा थानू, लंबा सांह लवो। ਵੱਡਾ ਸਾਹ ਲਉਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਕਾਫੀ ਆ ਜੂਗੇ, ਬਚ ਜੂਗੇ।
1: ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ।
0: ਤਾਂ ਕਿ ਖਲੋ ਸਕੇ,
1: ਇੱਕ ਲੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ।
0: ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਨਾ।
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਪੱਕਾ?
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਪ ਆ ਜੀ, ਸੱਪ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਪਰ ਸੱਪ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
1: ਸੱਪ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ।
0: ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਪ ਤੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੋੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੀ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੱਪ?
1: ਸੱਪ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ 'ਚ।

हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल आदाब जी आया नूं दोस्तों जी प्रोग्राम शुरू हो गया है जी यूवाणी ते तुसीं ट्यून इन कीता होया 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर दा एक केंद्र है ते मैं हाँ थोड़े दिलां दी धड़कन ते चेहरे ते मुस्कान लियाण वाली थोड़े दिलां दी धड़कन तुहाडी आर जे दीक्षा जी दोस्तों प्रोग्राम लेके हाजिर हो गई हाँ मैं ते दस दिए नाल दी नाल अज किहड़े किहड़े सैगमेंट रहणगे जी बड़े खास सैगमेंट रहने अज ते तुसीं सारिआं ने जाणा किते नहीं है बड़ियां सारियां गल्लां बातां करनियां ते प्रोग्राम नूं इंजॉय करना असीं गल करने आ सैगमेंट दी सब दा पहले आएगा जी साडा वर्ड एक्सप्रेस ते अज दा जिहड़ा वर्ड लेके आई है ना मैं तुसीं इन्ना रिलेट करोगे क्योंकि ये जिहड़ी सिचुएशन अज तुसीं सारे जणे फील कर रहे हो और तुहाडे लिए उस सिचुएशन दे लिए एक वर्ड लेके आई हाँ मैं फिर आएगा जी साडा यंगेस्ट आ जिहदे नूं मैनूं लगदा कि तुसीं सारे जणे बहुत ज़्यादा पसंद करदे हो क्योंकि वह है ही इन्ना वधिया सैगमेंट ते जिहदे विच असीं एक बड़ा ही इंटरव्यू लेके आए हाँ तुहाडे लिए बड़ा ही इंट्रस्टिंग इंटरव्यू फिर आएगा जी साडा रोज़गार समाचार जे तुसीं जॉब करना चाहते हो या तुसीं कोई एग्जाम फिल करना चाहते हो गवर्नमेंट ते तुसीं जरूर मतलब रोज़गार समाचार सुनियो बड़े ही इंट्रस्टिंग है ते इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर करांगी इसी दे नाल असीं अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है शुरू करने आ ते प्रोग्राम की शुरुआत असीं हमेशा करते हैं जी कुछ नवी चीज़ लैके आने क्योंकि हर दिन कुछ खास खास हुंदा ते कुछ खास मनाया जाता है अज दे दिन जाने कि 10 जून दुनिया भर दे विच ना अंतरराष्ट्रीय सभ्याचारा विचकार संवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन मनाया जा रहा है दोस्तों अगर असी गल करिए तो साड़ी दुनिया दे विच ना अनेक देश ने भाषावां ने धर्म है कल्चर ने अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा है अलग अलग उन्होंने विचार है धर्म है सब कुछ अलग अलग अलग उन्होंने हैरीटेज है तो जिहड़ा सभ्याचार है ना बड़ी ही वक्री पहचान हुंदी है असी अगर असी पंजाबियों की गल करिए तो साड़ी भाषा पंजाबी है साडा सभ्याचार कुछ अलग ही है बहुत सारे इदा के होर देश ने जिन्हों का सभ्याचार अलग है अलग अलग सभ्याचार जो इकट्ठे हो जाते ना एक दूसरे नाल विचार अपने साझा करते हैं तो उन्होंने सारे साझा करना चाहिए और उन्होंने जेडे कि

जी दोस्तों, उम्मीद करती हाँ प्रोग्राम युवाणी तुसी इंजॉय कर रहे होवोगे। तो सैगमेंट चल रहा जी साडा यंगिस्तान, तो कड़ी तो बच चुकी है जी 5:55 हो गया जी गल करते करते। तो इसी के नाल मैं रोज़गार समाचार एक होर तुहाडे लिए लैके आ गई हाँ। अगला रोज़गार समाचार साडा आ रहा जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI वालों 19 मई 2026 SBI रिक्रूटमेंट 2026 की नोटिफिकेशन जारी की गई है। इस भर्ती राही 7,150 पोस्टा निकलिया ने। तो इस भर्ती की तुम्हें की करना है जेडी कि किसी यूनिवर्सिटी तो अगर तुम ग्रेजुएशन की हुई है तो तुम अपलाई कर सकते हो। एज लिमिट की गल करिए 28 से लेकर 30 साल रखी गई है। रिखावे वर्गा और सरकारी नियमानुसार भी छूट दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसैस है 19 मई 2026 तो शुरू हो चुकी है। तो अर्जियां भरन की जी आखिरी मिति है वह वधा के 15 जून 2026 कर दी है। तो प्रोसैस की गल करिए सिलैक्शन ऑनलाइन रिटर्न एग्जामीनेशन रहेगा। लोकल लैंगुएज टैसट भी शामिल है। चुने गए उम्मीदवार नू इस साल दी जिहड़ी है ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस दौरान 15,000 रुपये वी स्टाइफन भी दिता जाएगा। तुसी अगर इस जिहड़ी भर्ती रिलेटिड होर इनफॉर्मेशन लेना चाहते हो जां तुसी फॉर्म फिल करना चाहते हो तो इसकी जानकारी तुसी इन्हां दी वैबसाइट पर जाके लै सकते हो। वैबसाइट तुसी नोट कर लो www.sbi.com.in करियर पर जा सकते हो। तो फिर मुलाकात होगी, फिलहाल तुसी इंजॉय करो ए ट्रैक।

फलसफा है कि दोस्तों तलवार शरीर काटती है, किताब सोच बदलती है, ते सोच बदल गई तो दुनिया बदल गई दोस्तों, ते दुनिया बदल गई।

हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोस्तों, मैं कहा जी एक ना एंटरटेनमेंट ब्रेक हो चुका है। एंटरटेनमेंट ब्रेक से क्यों का थानू मैं ना हसाऊंगा, स्रोतियां अपने सुनाऊंगा। वैल देख ना पति कहता कि अपनी पत्नी कि मैनू लगता ना मैं तेरे बिना रह नहीं सकती। पत्नी कहती ओए होए ए गल सच्ची है। तो पति कहना हाँ क्योंकि रोटी बनाई नहीं आती। टीचर की कहना ना अपने मुंडे कहता अपने स्टूडेंट मुंडे कह लो चलो कहता पुत्र दस ताजमहल कौन किने बनाया। तो मुंडा कहता कि मैडम जी मैनू नहीं पता जी मास्टर जी मिस्त्रिया ने बनाया वैसे जी। तो अच्छा जी टीचर कहता ना ना भी पूछ लेना सी। अगे मुंडा कहता

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सपोज मैं फिर नाल पंजाब चली जावा,
2: हैं?
1: मैंनू किथे लेके जावेंगा?
2: महल च।
1: ओ, तेरे कोल भी महल हैगा?
2: इदू बड़ा महल।
1: अच्छा।
2: वैसे मैं दो कमरे छत्ते हैं, बाकी खुला छड्डे।
3: एक ता मैनू नींद नी आउंदी रहंदी थोड़ी याद सताउंदी।
1: तुझे कोई कुड़ी पसंद आ गई?

दोस्तों तो ही सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों किताब ते गल चल रही सी ते किताब दे ना तीन थम बारे भी गल कर लैने, यानी कि पिलर्स ऑफ किताब फिलोसफी। पहला है समा बचाना, यानी कि टाइम मशीन। 500 साल पुराने बंदे दी सोच 5 मिनट च तेरे दिमाग च, गुरु नानक जी नाल बैठ के गल करनी है, गुरु ग्रंथ साहिब खोल लियो, यह समय दी मशीन तो कट नहीं। सिख्या है कि तजर्बा खरीदन लई ना 60 साल जीवन दी लोड़ नहीं, 60 रुपए दी किताब ही काफ़ी है। उत बाद आ जाती है चुप दी ताकत, यानी कि पावर ऑफ साइलेंस। मोबाइल चिकदा, टीवी रौला पाउंदा, किताब चुप रहिंदी है, पर उहदी चुप च हजार आवाजा ने। एक किसान खेत दी मुढ़ ते बैठ के नानक सिंह पढ़दा, शोर मच रहा हुंदा, पर उहदी दुनिया सिर्फ ओह किताब है। सिख्या, जिहड़ा चुप सुन लवे ओह सब कुछ समझ जांदा। अखीर है आजादी फ्रीडम। जेल च बंद बंदा भी किताब नाल आजाद, जेल च बंद बंदा भी किताब नाल आजाद। मंडेला 27 साल जेल च रहे पर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिख गए। शरीर बन्या सी सोच नहीं। सिख्या कहिंदी है कि जिहदे हाथ च किताब ओह कदे गुलाम नहीं हो सकदा। गल करदे अगली कि अज दे युग च ना किताब दा सवाल की है। लोग कहिंदे आने सी कि सोशल मीडिया दा जमाना है, किताब कौन पढ़दा है। सच यह है कि सोशल मीडिया जवाब देंदा, किताब सवाल पैदा करती है। सोशल मीडिया एक सेकेंड च ना 10 लाख नतीजे देंदा, पर किताब ना 10 साल तक तेनों एक सवाल नाल छेड़दी रहिंदी है। उदाहरण कह लें कि यूट्यूब ते अगर एक सोशल मीडिया ते 2 मिनट दी वीडियो वेख के तुसी सफलता देना जेडे 5 टिप्स भी भुल जाते हो, पर जड़ा गिवर है किताब है पढ़ के ना तुसी 10 साल बाद भी तुसी किसे दी मद कर दे हो ना बिना बदले दी आस दे। फलसफा है कि जानकारी डाटा, ज्ञान विजडम सोशल मीडिया डाटा देंदा है ते किताब विजडम देंदा है।

0: एक जिद्दी गुआंढी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मन्नन तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब का बिजली बिल जीरो आन लगा, फिर बोलिया हुण लगा ही दिना हां। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल दोस्तों, बस कुछ ही वेला रह गया इस प्रोग्राम नूं खत्म होण लई, ते आखिर विच ना थानू कुछ ना कुछ आपां जरूर गलबात करके जाऊंगे किताब दे उपर, कि किताब ना सब तो वड्डी जिहड़ी चीज़ है ना, आपां गल कीती सी पिछे कि कदी इकल्ले पढ़ियो, कहिण दा मतलब इकल्लेपन दा दोस्त है ना जिहड़ी किताब, ओह कमाल चीज़ है। इहदे बारे आपां गल करदे कि जदों सारे रिश्ते स्वार्थ मंगदे ने, किताब बिना शर्त नाल खड़ी रहिंदी है। दोस्तों लाइन यह है कि दुनिया तैनू उदों याद करदी है जदों उहनूं लोड हुंदी है, किताब तैनू उदों भी याद करदी है जदों तैनू लोड हुंदी। उदाहरण वजों बजुर्ग बाबा घर सारे बाहर शाम नूं चाह नाल बाबा बलवंत दी कविता खोल लेंदे सी। कोई बोलदा नहीं पर इकल्लापन भी नहीं लगता, किताब दोस्त बन के। दोस्तों तुसीं सुनिया जां तुसीं नोट किया होगा हमेशा कि आपां ना बहुत सारे साडे बजुर्ग होंदे आ जिहड़े अखबार

सो दोस्तों एसी आज द प्रोग्राम लव यू जिंदगी आई होप तुसी यानी कि आपा बहुत एंजॉय किया ते मजा आया। अखीर में यही कहूंगा दोस्तों कि जिंदगी पूरी नहीं होंदी पर सोहनी ना जरूर बनाई जा सकती है। आओ इस नु मिल के कहिए लव यू जिंदगी। आई स्टे ट्यून्ड बाय बाय।

नमस्कार, शाम दे वाजगे ने साथ ते पेश ने एक बार एफएम न्यूज हेडलाइंस। मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होने ते प्रधानमंत्री ने सब तो लंबे कार्यकाल की प्राप्ति के संबंध च अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ की नवी दिल्ली च बैठक जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अज एक मता पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब तो लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनने ते वधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज भारत के सब तो वध समय तक सेवा निभाने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनने ते देश विदेश तो वधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार वालों राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशों लई 95,962 करोड़ ते अंतरिम बजट अलॉटमेंट की तजवीज़। पंजाब सरकार वालों पटियाला विच हाईब्रिड सफाई मॉडल का आगाज़। सूबे का सब तो साफ सुथरा शहर बनाने लई 30 दिनों का टीचा मिथ्या गया। समाजिक सुरक्षा महिला अते बाल विकास विभाग वालों जिला मानसा की एक बुजुर्ग महिला की शिकायत ते तुरंत दखल दिंदिया मामले की जांच मुलजम नूं गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने पंजाब पुलिस की महिला पुलिस अधिकारियों लई 93 दोपहिया इलैक्ट्रिक वाहनों नूं रवाना किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पाकिस्तान स्थित इतिहासिक गुरधामा के दर्शनों लई सिख श्रद्धालुओं का जत्था जयकारियों की गूंज नाल रवाना किया गया। हरियाणा राज्य महिला कमीशन की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने अपने अहदे तो अस्तीफा दे दिता है। अफगानिस्तान खिलाफ 3 मैचों की एक रोजा लड़ी तो पहला हार्दिक पांड्या सट कारण टीम तो बाहर होए। इस सन हुण तक दीआं एफएम न्यूज हेडलाइंस। हुण तुसीं सुणोगे अगला सिलसिलेवार प्रोग्राम 102.7 एफएम रेनबो ते।

हाँ जी, बजगे की नहीं जनाब, नाच मेरी बुलबुल तुम्हें पैसा मिलेगा, ऐसा कदरदान तुझे कैसा मिलेगा। भाई बहुत ही खिड़िया होया गीत है, एंड वन एंड ओनली नन अनदर अदैन जिन्होंने गाया, वो भी सारियां दे फेवरेट ने अज भी। पर ऐसी गल कर रहे हैं जिन्हां दा जन्म होया 24 अक्टूबर 1915 नूं, 10 जून 1987 नूं इस दुनिया नूं अलविदा कह गए। साइड करैक्टर रहा इन्हों का फिल्मों के अक्सर, और खलनायक के तौर पर अक्सर नज़र आते रहे फिल्मों के जनाब। कौन जी? जीवन जी, जिन्हों के बारे अक्सर कहा जाता है कि जेकर ये फिल्म के एक वक्री जान पै जाती है। जीवन जी के बारे कहा जाता है कि सुनहरी दौर गोल्डन एरा दे अजिहे खलनायक विलन की गल आती है जिसका बेहद रोबदार संवाद, बोलन का तरीका, अनोखे हादसे दे विच अजिहा व्यंग हुंदा सी, ते सब तो पहला नाम हमेशा जीवन साहब का आउंदा सी। उन्होंने अपनी अदाकारी नाल बॉलीवुड दे विच अजिही पहचान बनाई जो अज भी मील का पत्थर मनी जाती है। आओ उन्होंने जीवन के बारे हुण गलबात करते हैं। कहिंदे उन्होंने असली नाम ओंकार नाथ धर, तो असी पहला गल कर चुके हैं कि उन्हों का जन्म होंदा है जी 24 अक्टूबर 1915। इस दे नाल तुहानू दस दिए कि उन्होंने पिछोकड़ की जेकर गल करिए उन्हों का जन्म बहुत ही अमीर अते कुलीन कश्मीरी पंडित परिवार दे विच होया।

0: तो देखो,
1: अरे रंग लगाया
0: इसके बाल तो देखो,
1: अरे झूठे मूठे
0: इसके दांत तो देखो,

0: बताऊं।
1: अरे नाजी नाजी नाजी,
0: डर गया वो कैसे बाजार में ऐसे, शरीफों को हम रुस्वा नहीं करते मियां जुम्मन, तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय मेरी जान का दुश्मन, हाय।

0: यार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, वो नटखट वो खटपट वो पनघट वो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: अरे नैना हम मीठे बहना, अरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: गुजरिया
1: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया
2: आए आए तो बिल्कुल अजिहा अंदाज किशोर कुमार जी लैके आ सकते हैं, उन्होंने वर्गा कोई भी नहीं हो सकता। सुहाओ इस गीत के पिछे की किसारिया होएगा वह थोड़ा सुनाने। कहते कि सरल चौधरी जी का एक गीत सी कि जिस डुएट होना सी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने गीत गाना सी, पर रिकॉर्डिंग तो पहला लता मंगेशकर जी किसी कारण स्टूडियो ना पहुँच सके, शायद कह जा सकता सी कि वह विदेश हो सकते हैं या फिर कितने होर बिजी सके, शूटिंग दिया तरीका सिरते सन। सलल चौधरी जी परेशान सी पर किशोर दा ने हंसते हुए कहा, सलल जी ए दादा क्यों चिंता करते हो, लता नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं अकेले इस गीत को दोनों की आवाज़ में गा सकता हूँ, ट्राई करता हूँ, देख लेना कैसे होगा। हाँ तो सलल बाबू कहते पहले तो मैं मजाक लगया, पर जो किशोर कुमार जी माइक दे के गए तो सब नू हैरान कर दिता। गीत दे एक अंतरे दे विच भारी आवाज़ दे विच मरदाना आवाज़ कढ़दे सी, ते अगले ही पल वह आवाज़ नू बेहद बारीक करके औरत दी आवाज़ विच गाउंदे। जदों तुसी अज भी गीत सुणदे हो तां विश्वास करना औखा हो जाता है कि मर्द अते औरत दोवें लाइनां इक्को इंसान ने गाईआं ने अते इक्को साह दे विच बिना किसी आधुनिक डिजिटल ऑटो ट्यून दे। अज दा दौर हुंदा है कि गा लिया, मिकसिंग कर ली, टेक लै लिया, कोई इशू नहीं, एक गाना किन्ने टाइम तक चल रहा, पर पहला की होंदा सी प्रैक्टिस करया करदे सी किशोर दा दे वेले, उस टाइम दे उत्ते दसिया जांदा कि रिकॉर्डिंग अते जो सजिंदे होंदे सी कट्ठे प्ले होंदे सी और गाना ज़्यादातर कहंदे सी कि वन टेक दे विच हुंदा सी। तो सोच सकते हो कि किन्नी मुश्किल तरीके दे नाल ए गीत रिकॉर्ड होया होगा और वन टेक दे विच भी गाना किड्डा मुश्किल काम है। सो इस काम दे लई तां किशोर दा हुणा नूं हमेशा सैल्यूट है, क्योंकि जो उन्होंने काम किया वह कदे भी नहीं भुलिया जा सकता। सो किशोर दा ने जो अपना काम किया इस तरीके दे लई उन्हां लई ताड़ियां तां वजदियां ने जनाब। बिल्कुल किशोर दा नूं उन्हां दे काम दे लई हमेशा याद किया जाएगा। एंड कहिंदे ने कि जो उन्होंने काम किया अज भी उन्हां दे काम नूं देख के सुन के हर कोई व्यक्ति जड़ा है सीखण की कोशिश करता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया हमेशा ही ना भुलण योग है। सो 102.7 FM रेनबो दे वल्लों अजिही गल हमेशा दसी जाती है कि जो उन्होंने काम किया हमेशा उन्होंने उस दे लई याद किया जाएगा। सो बने रहो साढ़े नाल 102.7 FM रेनबो दे उत्ते। अगला गीत भी जो लैके आ रहा हाँ उसके पिछे की कहानी रही होगी वह भी थोनों दसागा, पर एक प्यारा जहा गीत है जी किसा एक करके सुनावांगे।
3: रंग जमा हो चकाचक हिरलो पान चबाए आहा

नमस्कार, राधे वजगने आठ ते पिछले एक बार फिर तो एफएम न्यूज हेडलाइंस। मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होने ते प्रधानमंत्री दे सब तो लंबे कार्यकाल दी प्राप्ति दे संबंध च अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ दी नवी दिल्ली विच बैठक जारी।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। भाई साढ़े को माज नहीं, साढ़े को गांव चरा सकते हैं, हैं दसो। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए, सी गांव चरा सकते कि नहीं यार? हसन वाली गल थोड़ी है, मैं सीरियस हाँ यार। बकरी दसो, बकरी बकरी यार फिर हस पे। चलो हंसना खेडना भी इतनी जरूरी है जी। 102.7 FM रेनबो ते मैं मित्र आर जी परविंदर। और गर्मी का मौसम आ चुका है। गर्मी के मौसम के अक्सर की होंगे कि गर्मी का मौसम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि बालों के लिए भी कहते हैं बहुत सारिया परेशानियां लैके आते हैं, जिमें तेज़ धुप, पसीना, मिट्टी, धूड़। प्रदूषण की वजह के नाल की होंगे, स्कैल्प ते गंदगी जमा होण लग पैंदी है, जिस दे नाल बालों तो अजीब जी स्मैल आने लग पैंदी। कई बार लोग जिहड़े हन नियमित रूप दे नाल रेगुलर रूप तो शैंपू नहीं कर पाते तो अजिही समस्या उन्होंने आ जाती है। खासकर लंबे वाला वाली महिलावां नूं अजिही परेशानी आ जाती है क्योंकि वालों की नमी पसीना जो लंबे समय तक बनया रहिंदा है अते वाल जल्दी ही उस दे विचों स्मैल आने लग पैंदी है। जेकर अजिही वजह महसूस करते हैं तो घरेलू उपाय उस दे लई मदद कर सकते हैं। हुण दसदे हां किस तरीके दे नाल। कहिंदे स्कैल्प ते पसीना आना, तेल, धूड़, बैक्टीरिया जमा होण दे नाल वालों तो अजिही समस्या आ जाती है, जिस दे नाल कई बार फंगल इन्फेक्शन, डेंड्रफ, लंबे समय तक गिले वाल जड़े वाल हैं वह बन के रखने के नाल अजिही समस्या बढ़ जाती है। सिर्फ वाल धोना ही काफ़ी नहीं हुंदा बल्कि स्कैल्प नूं सही देखभाल

नमस्कार, रात 9:00 तो एक बार फिर तो पेश ने FM न्यूज़ हेडलाइंस। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के सिलसिले च आज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ मीटिंग च जड़ी है आज नवी दिल्ली दे विच हुई है। केंद्रीय मंडल ने आज एक मता पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सब तो लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनन की वधाई दिती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज भारत के सब तो वध समय तक सेवा निभाने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनन ते देश विदेश तो वधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार वालों राज्य अते केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ के अंतरिम बजट अलॉटमेंट की तजवीज़। भारत सरकार ने पंजाब के सौनी सीजन 2026 यूरिया की मजबूत उपलब्धता यकीनी बनाया। सूबे

0: 107 FM रेनबो देव देख ली फरमाइश कहते ना फिल्म गोरा और काला से सॉन्ग धीरे धीरे बोल एंड भेजन वाले ने संदीप मकड़ जी ज्योति मकड़ जी मन्नत मकड़ जी भारत मकड़ जी कमल सानी पिंगा वाला चौक गोराया जलंधर से स्वाइए इनकी फरमाइश को प्ले कर देते हैं जनाब।
1: धीरे धीरे बोल को

102.7 एफएम रेनबो पे अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंची है, कह रहे हैं आदरणीय प्रसारक जी, बेशुमार मोहब्बत फिल्म दर्द से, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। गीत गायक किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी, अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा जी, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, खुश रहो मस्त रहो। सो आइए इनकी फरमाइश को प्ले कर देते हैं जनाब।

ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना

कहते हैं कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। 102.7 FM रेनबो।

कहते हैं कि देखने के लिए सारा आलम भी कम और चाहने के लिए एक चेहरा बहुत। और कहते हैं कि कुछ नजर नहीं आता उसके तसव्वुर के सिवा, हसरते दीदार ने आंखों को अंधा कर दिया। 102.7 FM रेनबो, शामे गजल।

कहते हैं कि कोई वीरानी सी वीरानी है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर घर याद आया। तुम परिंदों से ज्यादा, और कहते हैं कि तुम परिंदों से ज्यादा तो नहीं हो आजाद। शाम होने को है, अब घर की तरफ लौट चलो। 102.7 FM रेनबो, शामी गजल।

कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, और जाफिर आदमी उसको ना जानिएगा, वो हो कैसा ही साहब फहम और ज़का, जिस देश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। 102.7 FM रेन

कहते हैं कि बस की दुश्वार है हर काम आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। 102.7 FM रेनबो, शाम गज़ल।

नमस्कार। रात के पूरे 10:30 बज चुके हैं और FM बैंड 102.7 आपने ट्यून किया हुआ है। मैं आपके साथ RJ परविंदर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, एक प्यार का नगमा है। कहते हैं कि फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें भी लगती है मेहनत ज़्यादा। 102.7 FM

कहते हैं कि ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आ गया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आ गया। इश्क से तबीयत ने जिस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई और दर्द बेदवा पाया। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि याद मत रखिए ये रुदाद हमारी हरगिज़, हम थे वो ताज महल जौन जो भी ढाए जो ढाए भी गए। और कहते हैं कि सुनाई जो मैंने मुझसे खफा हुए क्यों लोग, किसी का नाम मेरी दास्तां में था ही नहीं। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि कौन रोता है किसी के खातिर ए दोस्त, कौन रोता है किसी के खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी के बात पे रोना आया। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि अब तो खुशी का गम है ना गम की खुशी है मुझे, अब तो खुशी का गम है ना गम की खुशी है मुझे, बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। और कहते हैं कि ना जाने किस उम्मीदवार बैठा हूँ, ना जाने किस लिए उम्मीदवार बैठा हूँ, एक ऐसी राह पे तेरी राह गुजार भी नहीं। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।